नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारे आज के सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। आज दिनांक 7 मई 2026 वार गुरुवार का दिन है। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 5:30 पर। इसके बाद हम रुख करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेशर और इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे ठीक 8 बजे। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुख करेंगे गजलों की ओर। सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं, और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है, क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? स्वयं विचार कीजिए।

0: जागृति बूंद, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ थाए
1: नाना अंजलि बूंद हूँ था का
0: अरे जागृति बूंद आपड़ी जे नदी है ये हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बूंद एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बूंद हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बूंद आपड़े भाई बूंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बूंद आपड़े भाई बूंदो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके
2: जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवू आ सब एनीमिया ना लक्षण है
0: होवे भाईन बोनू आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है
0: होपे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे
2: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
4: आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां या आपड़े नी कितली शांति मिले है जीनी हवा में आपड़े हाल हां ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है
5: होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा
4: प्रकृति आपड़ी जरूरत नदी बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा
5: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो
4: होवे आज नाना कदम है ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है
6: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
7: थारी में पासो लावो जूनू हवार सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू भारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो
8: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राखंगा
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
9: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है कि जब हमें काम करने का मौका मिले तो उसका पूरा फायदा उठाना है और नई बात सीखनी है।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि श्रोता साथियों, जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी ऐसा अवसर अवश्य मिलता है जब उसे अपने हुनर को दिखाने, कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन बहुत से लोग इन अवसरों को पहचान नहीं पाते या फिर आलस, डर और आत्मविश्वास की कमी के कारण उन्हें गवा देते हैं।
0: जी हाँ।
1: सच तो ये है कि जीवन में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो हर मौके को पूरा लाभ उठाते हैं और हर नई बात सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए कहा गया है श्रोता साथियों कि मौकों को पहचानो, सीखने की आदत अपने आप पनप जाएगी।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दे हम।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि जब हमें काम करने का मौका मिलता है तो हमें उसका पूरा फायदा उठाना है, साथ ही हर बात नई सीखनी है। श्रोता साथियों,
1: बिल्कुल
0: हम देख सकते हैं कि आज का जो ये विषय है जागृति जी, वो हमारे युवाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवावस्था केवल सपने देखने का समय नहीं होता। हम देखते हैं कि बल्कि सीखने, मेहनत करने और खुद को मजबूत बनाने का समय भी माना जाता है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि श्रोता साथियों, जीवन में हर किसी को नए नए अवसर तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो इन अवसरों को पहचान ले और उनका पूरा उपयोग करे। जागृति जी,
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है, हर दिन नई तकनीकें आ रही हैं और काम करने के तरीके भी धीरे धीरे बदल रहे हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में दोस्तों केवल डिग्री होना आपके लिए काफी नहीं होगा, बल्कि हर दिन कुछ नया सीखने की आदत भी आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि आज का समय तेजी से बदल रहा है, हर दिन नई तकनीक, नए विचार और नए तरीके सामने आ रहे हैं, जैसा कि अभी आपने बताया था।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम समय के साथ खुद को नहीं बदलेंगे और नई बातें नहीं सीखेंगे श्रोताओं, तो हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए जब भी हमें कोई काम करने का अवसर मिले तो हमें उसे पूरे मन से करना होगा।
0: जी जी।
1: चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, हर काम हमें कुछ नया सिखा कर ही जाता है। और कहा भी गया है कि हर काम अनुभव देता है और अनुभव इंसान को बेहतर बनाता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि केवल बड़ी नौकरियां, बड़ा मंच मिलने पर ही मेहनत करनी होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि छोटी शुरुआत ही हमें बड़े सपनों तक पहुंचाती है।
0: बिल्कुल,
1: एक छोटा अवसर भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। यदि कोई विद्यार्थी स्कूल में भाषण देने का मौका पाता है और पूरे आत्मविश्वास से प्रयास करता है कशिश, तो वही अनुभव आगे चलकर उसे अच्छा वक्ता भी बना सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जीवन में अवसर हमेशा बड़े रूप में है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार श्रोता साथियों, छोटे छोटे मौके भी भविष्य की बड़ी सफलता बन जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि किसी को छोटी नौकरी मिलती है तो किसी को प्रशिक्षण का मौका। जागृति जी,
1: जी हाँ,
0: किसी को किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ काम करने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो किसी को हम देखते हैं कि समाज के बीच काम करने का भी मौका मिलता है।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, ऐसे में समझदार व्यक्ति इन छोटे मौकों को भी गंभीरता से लेता है और बहुत से युवा ये सोचकर इस मौके को छोड़ देते हैं जागृति जी, कि इसमें पैसा कम है, उन्हें इसमें नाम नहीं मिलेगा या फिर काम बहुत छोटा है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इतिहास इस बात का गवाह है कि बड़े लोग अक्सर छोटे कामों से ही आगे बढ़ पाए हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि काम करने का मौका हमें जिम्मेदारी सिखाता है। जब हम किसी काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं, तब हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है।
0: बिल्कुल,
1: हम समझते हैं कि कठिन परिस्थितियों में कैसे काम करना है और समस्याओं का समाधान कैसे निकालना है। यही अनुभव आगे जीवन में काम आता है। हर नई बात सीखना जीवन को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा मंत्र है श्रोता साथियों। हम कह सकते हैं कि सीखना केवल किताबों तक सीमित नहीं होता, हम लोगों से, परिस्थितियों से, गलतियों से और अपने अनुभवों से भी बहुत सारी बातें सीखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है। इसीलिए हमेशा जिज्ञासु बने रहना जरूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। इसी के साथ दोस्तों, एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम जागृति जी इंसान को कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। अगर हमारे युवा साथी दुकान पर काम करते हैं तो लोगों से व्यवहार करना भी सीखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर कोई खेत में काम करता है साथियों, तो वह धैर्य और मेहनत सीखता है। और अगर कोई रेडियो, मीडिया या फिर सामाजिक संस्था में काम करता है, तो वह संवाद और जिम्मेदारी सीखता है। जागृति जी,
1: जी हाँ,
0: यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक दोस्तों अनुभव ही है। किताबें ज्ञान जरूर देती हैं, लेकिन काम आपको अनुभव सिखाता है।
1: बिल्कुल,
0: आज हम देखते हैं कि बहुत से युवा केवल आरामदायक काम चाहते हैं। जागृति जी, वे ऐसा चाहते हैं कि शुरुआत से ही सब कुछ आसानी से उन्हें मिल जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन में आगे वही बढ़ता है जो कठिन परिस्थितियों से कुछ नया सीखता है।
1: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है कि जब हमें काम करने का मौका मिले तो पूरा फायदा उठाए, क्योंकि हम उससे हर नई बात सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवावारा मर हित्ता किसान भाई बुन ने आपनी बुन मनीषा
1: ने आपनी बुन अंजलि नु
2: राम राम।
0: होवे भाई बुनो, आप सब हमली रिया हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में।
1: होवे भाई बुनो लेने हासिल थे गया हूँ कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने एक ना विषय ने हाथे मनीषा बुन आसर कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अपने भाई बुनो तक की बातचीत नु विषय है कि पर्यावरण ने खेती नु हूँ संबंध है ते हरते आपड़े भाई बुन जे ही ई पर्यावरण संरक्षण में आपड़ो योगदान आली शके।
0: होवे अंजलि बुन तो अना विषय माते आपड़े भाई बुन कती घणा अक्कानी वाते रिंगा अबर हमड़ा गीत ने मोरे कर आपड़ी वाती।
1: होवे तो भाई बुनो आप हमर तरेसु आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: ભાઈબંધ ગીત ત્યાં આવ્યું પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફેરે આપણે ભાઈબંધોનું સ્વાગત કરો હો આપણે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે અંજલિબેન આપે ગીત થકી પહેલે વિશે બતાડ્યું હતું કે આપણે ખેતીનું અને પર્યાવરણનું શું સંબંધ હે ને આપણે પર્યાવરણ સંરક્ષણ હે વેનમાં આપણે ભાઈબંધ આપણું યોગદાન હે તે આપી શકીએ
1: હવે તો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે મનીષાબેન આજે આપણે કાર્યક્રમમાં જોડી રહી માંગીલાલજી તો સૌથી કે પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત અને મોરેકર આપણી વાતે
0: હવે અંજલિબેન
1: સર નમસ્કાર
2: નમસ્કાર જી
1: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
2: જી ધન્યવાદ
1: સર જૈસા કે આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ ખેતીવાડી ઓર પર્યાવરણ કે સંબંધ કો લેકર
2: જી
1: હમ દેખતે હૈ કે આજ 5 જૂન કા દિન હૈ ઓર આજ કે દિન વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ મનાયા જાતા હૈ આજ કાર્યક્રમ મેં હમ યહી જાનેંગે કે કિસ તરીકે સે પર્યાવરણ કા સંરક્ષણ હમારે લિયે મહત્વપૂર્ણ હૈ और खेती के माध्यम से ये कैसे संभव हो सकता है
2: जी तो बहुत अच्छा विषय है और आप देख रहे होंगे कि पर्यावरण है वो उसका जो संबंध है खेतीबाड़ी से वो ऐसा ही है जैसा कि जीवन के लिए साहस की जरूरत होती है
1: बिल्कुल
2: तो उसी तरह जल जंगल जमीन और हवा और जैव विविधता की हम बात करते हैं तो ये खेती की मूल आधारशिला है
1: बिल्कुल
2: यदि पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो आपकी खेती समृद्ध होगी अगर खेती पर्यावरण के अनुकूल होगी तो पर्यावरण का जो संतुलन है वो हमेशा बना रहेगा
1: बिल्कुल
2: अगर आज की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बदलते मौसम घटते जल स्रोत मिट्टी की उर्वरता में कमी जैव विविधता को नुकसान तो ये जो है मानव जीवन के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है
1: बिल्कुल
2: ऐसे समय में हम विश्व पर्यावरण दिवस पे हम सोचने और समझने पर मजबूर करता है कि हम अपनी खेती और जीवन शैली को प्रकृति के साथ कैसे जोड़ें
1: बिल्कुल
2: तो हम बात करते जैसे खेती की तो सदियों से है जो हमारे जो समुदाय है इसमें प्रकृति का संरक्षण करता आया है उसके साथ मिलकर काम किया है खेती की है बीजों की बात करते हैं तो बीज संरक्षण है हम हांगणी खेती की बात करते हैं वृक्षों का संरक्षण है जैविक खाद का उपयोग और जल संरक्षण जैसी परंपराएं थी वो हम कई सालों पहले हम करते आ रहे हैं
1: बिल्कुल
2: लेकिन धीरे धीरे आज की जो युवा पीढ़ी और जो बदलते जो पर्यावरणीय जो संतुलन है उसके कारण ये चीजें गंभीरता लाकर खड़ी कर दी इन्होंने
1: बिल्कुल
2: तो इसमें क्या है कि अभी वर्तमान समय में इनको पुनर्जीवित करने की जरूरत है क्योंकि समृद्ध खेती करनी होगी तो पर्यावरण को भी समृद्ध रखना पड़ेगा
1: बिल्कुल
2: तो इसी तरह अगर खेती और पर्यावरण की हम बात करते हैं तो इन दोनों का गहरा संबंध होता है जैसे पूरी तरह खेती जो है वो पर्यावरण पर निर्भर करती है जैसे कि अच्छी मिट्टी पर्याप्त वर्षा उपयुक्त जल तो तापमान है उसको नियंत्रित करते हैं लोग
1: बिल्कुल
2: इस तो इसमें क्या है कि हमें आवश्यक है कि अगर आपको सही और सफल खेती करनी है तो हमें पर्यावरण का ध्यान रखना पड़ेगा
1: बिल्कुल
2: आज समय में जंगल कट रहे हैं आप देख रहे हैं जंगल कट रहे हैं पेड़ पौधे बहुत कम होते जा रहे हैं तापमान बहुत बढ़ रहा है खेती बाड़ी जो है वो पर्यावरण के कारण वो काफी असंतुलित हो गई है आपकी पैदावार है वो बहुत कम होने लगी है दूसरा कारण इसका ये है कि जैसे पर्यावरण की हम बात करते हैं तो मिट्टी और पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण संबंध है
1: बिल्कुल
2: और मिट्टी ही जो है आपकी खेती का पूरा जो उत्पादन है वो डिसाइड करती है
1: बिल्कुल
2: तो हम देखते हैं कि अगर आपकी मिट्टी सही नहीं होगी तो आपका पैदावार भी कम होगा उसमें से जो पैदा होगा अनाज वो भी इतना पौष्टिक नहीं होगा तो जब मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी में क्या है कि पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत सारे करोड़ों जीव उस मिट्टी में होते हैं
1: बिल्कुल
2: जिसमें केचुए होते हैं बहुत प्रकार के जीवाणु विषाणु होते हैं वो मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं
1: बिल्कुल
2: लेकिन धीरे धीरे क्या है कि हमारी जो समुदाय है इन्होंने क्या किया धीरे धीरे रसायनों का उपयोग बढ़ा दिया आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति डीएपी और यूरिया के पीछे भाग रहा है तो अगर ये ऐसा है तो हमें सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं
1: बिल्कुल
2: हम उस मिट्टी का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं या सही कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जो है रासायनिक अगर ज्यादा उपयोग कर रहे हैं तो ये समझिए आप मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और स्वास्थ्य खराब होगा तो आपका जो भी उत्पादन है जो भी आपकी क्रॉप है
1: बिल्कुल
2: वो नहीं होगी कई फसलें ऐसी है जो उस मिट्टी में उगना भी बंद कर देती है और कर दी है अभी वर्तमान में
1: जी जी
2: तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम जो है हमें पर्यावरण को संतुलन बनाकर हमको खेतीबाड़ी करनी चाहिए जिसमें हमें जैसे हम बात करते हांगणी खेती की
1: जी जी
2: तो हांगणी खेती पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखोगे उसमें आप 8-10 प्रकार के अगर सब्जियां या फल या फिर आप अनाज उगाते हैं तो वो मिक्स में आंगणी जो हम बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं वो आपको जो आपके मिट्टी है उसको संरक्षण और उसको उर्वरक बनाती है।
1: बिल्कुल।
2: जैसे आप बात करते हैं कि आप मक्की के साथ में आपने अगर चौले लगा दिए या और जैसे उड़द लगा दिए, मूंग है, तो उसकी जो पत्तियां हैं वो हरा खाद का काम करती है और हरा खाद हमेशा पर्यावरण को सुरक्षित बनाता है, स्वस्थ बनाता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप हमें बहुत अच्छे तरीके से ये बता रहे हैं कि खेती और पर्यावरण का क्या संबंध है, हम आपके माध्यम से जान पा रहे हैं कि मिट्टी और खेती को किस तरीके से पर्यावरण की आधारशिला कहा जा सकता है। यही अब बात आती है जल की। तो जल किस तरीके से हमारे पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
2: देखिए, जल जो है, जल के बिना वैसे तो कुछ भी संभव नहीं है। हमको पता है कि जीवन भी संभव नहीं है।
1: जी जी।
2: तो आज की हम बात करते हैं तो जल का जो लगातार जो जल स्तर है वो कम होता जा रहा है।
1: जी जी।
2: और इसके कारण अनेक प्रकार के संकट पैदा हो रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं, हमारे जो पूर्वज थे उन तालाब, कुएं, बावड़ियां, नाडी, खेत तालाब, तो वो संरक्षण करते थे उस जल का। तो उस समय क्या होता था कि उसका जो स्तर है वो बना रहता था।
1: बिल्कुल।
2: और इस तरह का संकट नहीं आता था। लेकिन अब भी क्या है, वर्तमान में आप देखोगे तो इसको रोकने या इसको बचाने के प्रयास बहुत कम हो गए हैं। हमारे समुदाय की हम बात करते हैं तो हमारे समुदाय में आज भी वो परंपराएं हैं। कहीं परिवार, कहीं गांव है जो हमारे लिए एक उदाहरण है। जैसे हम बात करते हैं हलमा के माध्यम से जल संरक्षण, तो अभी ढेर सारी जो गाँव में हमारे जो हलमा किया, उससे तालाबों को साफ किया, उसके गाद को निकाला, तो ये जो चीजें हैं ये हमारे पूर्वज और ज्यादा करते थे।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन धीरे धीरे कम हो गई। और ये कम होने के कारण क्या होगा, जब जल का आप संरक्षण नहीं करोगे तो जो जल स्तर है वो आपका नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो धीरे धीरे आपकी जो जमीन है उसको पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल।
2: और आपकी खेती बाड़ी धीरे धीरे बंद हो जाएगी।
1: जी।
2: तो इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और खेती को सुरक्षित रखने के लिए जल जो है संरक्षण वो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
2: इसी तरह हम बात करते हैं, जैसे बीजों की हम बात करते हैं, तो बीज भी जो पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण साथी है, जो हमेशा, क्योंकि जो हमारा देसी बीज होता है वो हमारे जो पर्यावरण है उसके अनुकूल होते हैं वो, और वो पैदावार बहुत ज्यादा देते हैं।
1: जी जी।
2: लेकिन अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि किसान भाई हमारे बाजार की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो बाजार से हाईब्रिड बीज खरीदते हैं, लेकिन वो नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा उठाते हैं। उसका कारण ये है कि अगर बीज पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा तो अगर आपके क्षेत्र में ज्यादा बारिश हो गई तो आपकी फसल नष्ट हो जाएगी।
1: बिल्कुल।
2: तो इसी तरह हमें देखना है कि हमें हमेशा हमारे जो खुद के बीज है उनको सहज कर रखें, उनको हम उगाएं। और आपको ये बताऊं मैं कि हाइब्रिड बीज आपको एक बार पैदावार देगा, अगर दूसरी बार उसको डालते हो आप तो वो नहीं देगा उतनी।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन देसी बीज जितना पुराना होता जाएगा उसकी पैदावार है उतनी बढ़ती जाएगी।
1: बिल्कुल।
2: और पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल होते हैं वो, क्योंकि जैसा आपका वहाँ का क्लाइमेट होगा उसी तरह वो उगेंगे, उसी तरह पैदा होगी, उसी तरह आपका उत्पादन होगा, तो वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अभी वर्तमान में क्या है कि हम पर्यावरण की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने संकट खड़ा कर रही है।
1: जी जी।
2: तो मैं किसान जो साथी है हमारे, मैं यही कहूंगा कि क्यों हम इस परंपराओं को भूल रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते आए हैं।
1: बिल्कुल।
2: हमें पुनः उनको अपनाने की आवश्यकता है अगर हमारी खेती को बचाना है। तो जैसे आप कर सकते हो, जल संरक्षण की हमने बात की, बीजों का संरक्षण है, आपका जो वन संरक्षण है, आपका जो हम बात करते हैं कि जैसे जैव विविधता की बात करते हैं।
1: जी जी।
2: क्यों, जैव विविधता भी पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। आप देखोगे कि धीरे धीरे हमारी जैव विविधता ही बहुत कम होती जा रही है, चाहे वो खाने की हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीट हो, ये सब धीरे धीरे धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। और उसका कारण है कि हमारी खेती बाड़ी में हम रासायनिक का उपयोग करते हैं, तो वो उनके अंदर जाता है तो वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाते हैं। हमें अभी वर्तमान में यही सोचने की जरूरत है, देसी खाद हो हमारा, बर्मी कंपोस्ट हो, उकेड़ा हो, या फिर आपका गोबर खाद हो जो हम नॉर्मली तैयार करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो इस तरह से हम उस खाद का उपयोग करें, जो बीज हमारे पास है उसको हम हमेशा सुरक्षित रखें, उसको संरक्षण करके रखें, उसका उपचार करके रखें, ताकि अगली बार वो काम आए।
1: बिल्कुल सर।
2: तो इन प्रथाओं को आपको ध्यान में रखना।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छे तरीके से हमें ये बताया है कि खेती और पर्यावरण का संबंध कैसे है और किस तरीके से खेती के माध्यम से हमारे किसान भाई बहन जो हैं वो पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो बातें सर ढेर सारी हो गई है, अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं सभी श्रोतागणों को ये संदेश देना चाहूंगा कि जो हमारी परंपरागत खेती है उसे हमें पुनः जीवित करना है, और उसी के साथ हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और हमारी खेती को भी सुरक्षित रखना है। तो इस दिशा में आप सभी प्रयास करें ताकि जल्दी से जल्द है इस तरह का संकट हमारे सामने खड़ा ना हो।
1: बिल्कुल, तो सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
2: जी धन्यवाद।
1: મનીષા બોન જેમકે હવે આપણે વેસ્ટમાં માંગીલાલજી જોડે તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા કાની વાતે બતાડી હે। આશા કરું હું કે આ હંગરી વાતે આપણે ભાઈન બોનોને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટો પડવાનું। તો સૂટો તો પડા, પણ સાથે પહેલે હામરી લે કર ગીત ને મોરે પડા સૂટો।
0: હવે અંજલી બોન તો ભાઈન બોનો હમલતા રેજો આપણું રેડિયો આપણી વાતે વાગર રેડિયો 90.8 FM માતે।

नमस्कार साथियों, कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वीकार कीजिएगा साथियों मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर हाजिर होते हैं तो आपसे बात करते हैं एक नए विषय को लेकर। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय हमारे बीच रहेगा। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं मजाक की चोट को लेकर। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं कि मजाक तो हम सभी करते हैं और बचपन में तो हमने ढेर सारे मजाक किए हैं, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मजाक भारी पड़ जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो साथियों पहले मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय में आपको बता चुकी हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं मजाक की चोट को लेकर। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में एक बहुत ही प्यारा सा रेडियो नाटक है, जिसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि मजाक की चोट आखिर है क्या। क्योंकि दोस्तों, हम देखते हैं कि

0: बचपन में मजाक हम सब ने किए हैं और बचपन जो है वो जीवन का सबसे सुंदर समय होता है, लेकिन कई बार श्रोता साथियों यही बचपन बच्चों के लिए डर, शर्म और अकेलेपन का कारण भी बन जाता है। हम देखते हैं कि स्कूल में, गली मोहल्लों में या दोस्तों के बीच कई बच्चे ऐसे हैं जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। किसी के कपड़े को लेकर, किसी के रंग को लेकर, बोलने के तरीके को लेकर, गरीबी या कमजोरी पर बच्चे हंसते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है साथियों कि ये सिर्फ उनके लिए हंसी मजाक है। लेकिन कभी कभी साथियों यही मजाक किसी बच्चे का आत्मविश्वास भी तोड़ देता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम दो सहेलियों की कहानी को जानने वाले हैं, रीमा और कविता। रीमा बड़ी चंचल सी और मजाक करने वाली लड़की है, वहीं जो कविता है वो थोड़ी सी संवेदनशील और समझदार लड़की है। तो आइए साथियों सुनते हैं कि आखिर मजाक की चोट है क्या।
1: अरे कविता, आज देखा तुमने उस लड़की को, कैसे पुराने कपड़े पहन कर आई थी और उसका बेग कितना फटा हुआ था।
2: रीमा, तुम इस तरह क्यों हंस रही हो?
1: अरे यार, मजाक कर रही हूँ, इतना सीरियस मत हुआ करो।
2: लेकिन अगर उसे बुरा लग गया तो?
1: अरे छोड़ो भी, आजकल इतनी छोटी छोटी बातों का कौन बुरा मानता है।
2: रीमा, कुछ बातें छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन दिल पर बड़ी चोट कर जाती हैं।
1: अरे तुम भी ना हर बात में ज्ञान देने लगती हो। हल्का सा म्यूजिक, फिर स्कूल की घंटी। कविता।
2: अरे रीमा, क्या हुआ, आज इतनी चुप क्यों हो?
1: आज क्लास की लड़कियां मेरा मजाक उड़ा रही थी।
2: क्यों?
1: कह रही थी कि मैं सही अंग्रेजी नहीं बोल पाती। सब हंस रहे थे, मुझे बहुत शर्म आई।
2: और कैसा लगा तुम्हें?
1: बहुत बुरा, ऐसा लगा जैसे मैं सबसे अलग हूँ। मन किया कि क्लास से बाहर चली जाऊँ।
2: बस रीमा, यही एहसास उस नई लड़की को भी हुआ होगा जब तुम उसके कपड़ों पर हंस रही थी।
1: मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं, मुझे लगा था कि मैं बस मजाक कर रही हूँ।
2: रीमा, मजाक तब तक ठीक है जब तक किसी की मुस्कान बनी रहे, लेकिन अगर किसी की आंखें नम हो जाए तो वो मजाक नहीं तकलीफ बन जाता है।
1: कविता, क्या सच में लोग इतनी छोटी बातों से टूट जाते हैं?
2: हाँ रीमा, हर इंसान बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही संवेदनशील भी हो सकता है। कुछ बच्चे घर की परेशानी झेल रहे होते हैं, कुछ गरीबी से लड़ रहे होते हैं, कुछ पढ़ाई में कमजोर होते हैं, कुछ अपने रंग या शरीर को लेकर पहले से ही दुखी होते हैं, और जब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो किसी लायक नहीं है।
1: मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरे शब्द किसी को इतना दुख दे सकते हैं।
2: रीमा, शब्दों में बहुत ताकत होती है, वे किसी को ऊपर उठा सकते हैं और किसी को अंदर से तोड़ भी सकते हैं।
1: कविता, बचपन में मेरा भी मजाक उड़ाया जाता था।
2: सच में?
1: हाँ, क्योंकि मैं बहुत दुबली थी, सब मुझे सिकिया कहकर चिढ़ाते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं रोती भी थी।
2: फिर भी तुम दूसरों के साथ वही रहने लगी?
1: शायद क्योंकि मैंने कभी अपने दर्द को समझकर दूसरों के दर्द से जोड़कर नहीं देखा था।
2: रीमा, जो दर्द हम झेल चुके हैं उसी दर्द से दूसरों को बचाना ही इंसानियत है।
1: सही कह रही हो तुम कविता, अब से मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, और अगर मेरे सामने कोई ऐसा करेगा भी तो भी उसे रोकूंगी।
2: हाँ रीमा, यही सबसे बड़ी समझदारी है।
1: अब मुझे समझ आया, किसी को हंसाना अच्छी बात है लेकिन किसी पर हंसना गलत है।
2: बिल्कुल रीमा, हर बच्ची को प्यार, सम्मान और अपनापन चाहिए होता है, मजाक नहीं।
1: सही कह रही हो तुम।
0: साथियों, ये थी रीमा और कविता की कहानी। हमने जैसा कि देखा श्रोता साथियों कि रीमा जो है वो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाती रहती है, लेकिन कविता उसे समझाती है कि इस तरीके से दूसरों के रंग को लेकर या किसी भी चीज को लेकर मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती है। दोस्तों, कई बार हम ये सोचते हैं कि बच्चे हैं, थोड़ा मजाक तो करेंगे ही, लेकिन ऐसे में हमें ये समझना होगा कि बचपन में मिले शब्द जीवन भर याद रहते हैं। इससे किसी भी बच्चे का आत्मविश्वास तोड़ना काफी आसान है, लेकिन उसे फिर से खड़ा करना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, ऐसे में हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि किसी की कमजोरी पर हंसना नहीं, बल्कि उसका साथ देना सबसे बड़ी इंसानियत होती है। दूसरों को नीचा दिखाकर साथियों हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि उन्हें ऊपर उठाकर इंसान जो है वो बड़ा बन सकता है। जैसा कि आज की इस कहानी में हमने देखा कि कभी कभी हंसी के नाम पर कही गई बातें किसी के मन पर कितना गहरा असर छोड़ जाती है। बचपन श्रोता साथियों काफी नाजुक समय होता है। इस उम्र में बच्चे अपने आसपास के लोगों की बातों को बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं और दिल से भी लगा लेते हैं। अगर ऐसे में उन्हें बार बार नीचा दिखाया जाए, उनका मजाक बनाया जाए और उनकी कमियों को सबके सामने उछाला जाए तो वह धीरे धीरे खुद को कमजोर समझने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि साथियों अच्छे व्यवहार और संवेदनशीलता की भी शिक्षा दें। उन्हें हम ये समझाएं कि हर इंसान अलग होता है, किसी का रंग अलग हो सकता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर हो सकता है, लेकिन श्रोता साथियों इसका मतलब ये नहीं है कि वह सम्मान के लायक नहीं है। याद रखिए दोस्तों कि एक अच्छा शब्द किसी टूटे हुए मन को फिर से हिम्मत दे सकता है और एक छोटी सी तारीफ किसी बच्चे के अंदर नया आत्मविश्वास जगा सकती है। तो ऐसे में आज से ही हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी के दिल को चोट पहुंचाने वाली हंसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम अपने बच्चों को दया, सम्मान और अपनापन सिखाएंगे, क्योंकि अच्छे समाज की शुरुआत अच्छे व्यवहार से ही होती है दोस्तों। तो इसी उम्मीद के साथ अब जैसा कि बातें कार्यक्रम में मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी है और समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

दोस्तों इस गीत के साथ ही आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से मैं विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सच्चा बचपन में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों। साथ ही दोस्तों आप सभी को छोड़े चलती हूँ एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: जागृति बुन आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ू जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा त आपड़ू ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व नी कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके
2: जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवू आ सब एनीमिया ना लक्षण है
0: होवे भाईन बोनू आ लक्षण आपड़ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है
0: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे
2: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनिमिया थकी बची सकंगा
3: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
4: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
5: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नु समाधान आपड़े कनेस है ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनु

0: अपने अधिकार, आस है समाधान में राह।
1: होवे भाइयों ने बहनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लगाड़ो।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट
2: और आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय है पर्यावरण का महत्व। जैसा कि मनीषा और कशिश, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है।
0: बिल्कुल।
1: ये केवल पेड़ पौधों, नदियाँ, पर्वत और जीव जंतुओं का समूह नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था है जिसके सहारे पृथ्वी पर जीवन संभव है। श्रोताओं, मनुष्य का जन्म, विकास और अस्तित्व पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। हम जो हवा लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो भोजन खाते हैं और जिस भूमि पर हम रहते हैं, वो सब पर्यावरण की ही देन है।
2: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम में युवा साथियों से हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि हमारे जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है, साथ ही पर्यावरण को हम स्वस्थ कैसे बनाकर रख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
2: ऐसी ढेर सारी बातें रहेंगी साथियों। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो साथियों को पहले यहाँ पर मनोरंजन करवाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं पर्यावरण के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं जागृति जी और मनीषा की, पर्यावरण केवल हमारे चारों ओर मौजूद पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों, हवा या फिर मिट्टी का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का आधार है। साथियों, देखते हैं कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध उतना ही पुराना है जितना स्वयं मानव सभ्यता का इतिहास है।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, प्रकृति हमें शुद्ध वायु, जल, भोजन, ऊर्जा और जीवन के लिए कुछ जरूरी संसाधन प्रदान करती है। हम देखें तो यदि पर्यावरण स्वस्थ है तो मानव जीवन भी स्वस्थ और सुरक्षित माना जाता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वहीं यदि पर्यावरण असंतुलित हो जाए तो इसका प्रभाव सीधे हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ अर्थव्यवस्था और भविष्य पर पड़ता है।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है।
2: जी हाँ,
1: हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी और भोजन के लिए कृषि भूमि पर्यावरण से प्राप्त होती है।
2: बिल्कुल,
1: यदि पर्यावरण न हो तो जीवन की संभावना करना हमारे लिए मुश्किल है।
2: बिल्कुल,
1: साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि पेड़ पौधे वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। स्वच्छ वायु मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जागृति जी, प्रदूषित हवा अनेक बीमारियों को जन्म देती है जबकि स्वच्छ हवा स्वस्थ जीवन प्रदान करती है।
3: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि हम देखते हैं कि आज विज्ञान और तकनीक के इस युग में मनुष्य ने अभूतपूर्व प्रगति की है, लेकिन इस विकास के दौर में श्रोता साथियों उसने प्रकृति का अत्यधिक दोहन भी किया है।
1: बिल्कुल,
3: जंगलों की कटाई हो गई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। हम देखे तो समय रहते पर्यावरण की रक्षा नहीं की गई श्रोता साथियों तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। कशिश और मनीषा, हम कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि हमारे चारों ओर मौजूद वो समस्त प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इसमें वायु भी आ गया, जल, भूमि, वन, पर्वत, नदियां, समुद्र, पशु पक्षी, मानव समाज सभी शामिल है।
1: जी हाँ,
3: प्रकृति और मानव का संबंध एक दूसरे पर आधारित है। यदि पर्यावरण संतुलित रहेगा तो मानव जीवन भी स्वस्थ रहेगा और सुखी रहेगा। पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा तो अनेक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जैसे कि प्रदूषण हो जाएगा, जल संकट हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाएं आ जाएगी और स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो जाएगी। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, अगर पर्यावरण संतुलित रहेगा तो हम भी अच्छे से रहेंगे और अगर यही हम बिगाड़ लेंगे तो हमारा जीवन भी संकट में आ जाएगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें जीवन के आधार की तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व पर्यावरण के कारण ही संभव है। साथियों, में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी और भोजन के लिए कृषि भूमि पर्यावरण से ही प्राप्त होते हैं।
2: बिल्कुल,
0: यदि पेड़ पौधे न हो तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी।
1: जी हाँ,
0: और यदि नदियाँ सूख जाए जागृति जी तो जीवन में संकट और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
1: जी हाँ,
0: इसलिए पर्यावरण हमारे अस्तित्व की नींव है। हम कह सकते हैं कि स्वच्छ पर्यावरण अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी है। शुद्ध हवा और स्वच्छ पानी हमें अनेक बीमारियों से बचाते हैं साथियों।
1: बिल्कुल,
0: वहीं इसके विपरीत प्रदूषित वातावरण अस्थमा, हृदय रोग, त्वचा रोग और कह सकते हैं कि अनेक गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। नदियाँ, झीलें, तालाब और भूजल सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं।
0: बिल्कुल,
1: कृषि उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। जल के स्रोत की सुरक्षा ही पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण भाग है। साथ ही हम देखते हैं कि कृषि पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर करती है। उपजाऊ भूमि, उचित वर्षा, अनुकूल जलवायु के कारण ही फसलें उगाई जाती हैं। यदि श्रोता साथियों पर्यावरण असंतुलित होगा तो खाद्य उत्पादन भी प्रभावित होगा।
3: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने बताया कि शुद्ध हवा, साफ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण मनुष्य को निरोगी बनाते हैं।
0: बिल्कुल
3: साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर करती है। कशिश, वर्षा, मिट्टी की उर्वरता, जल स्रोत और मौसम सभी कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं।
0: बिल्कुल,
3: अगर पर्यावरण संतुलित रहेगा तो किसानों को अच्छी फसल प्राप्त होगी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ जैसी समस्या आती रहेंगी जिससे कृषि प्रभावित होगी। कहने का तात्पर्य ये श्रोता साथियों कि पर्यावरण संरक्षण केवल प्रकृति की रक्षा नहीं बल्कि हम किसानों और खाद्य सुरक्षा की रक्षा भी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम बातें कर रहे हैं हमारे युवा साथियों से पर्यावरण के महत्व को लेकर और पर्यावरण के ढेर सारे महत्व को हम जान पाए हैं, तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवाएं।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी पर्यावरण के महत्व को लेकर। हमने जाना था पर्यावरण का मानव जीवन में क्या महत्व है, साथ ही पर्यावरण और स्वास्थ्य को लेकर भी हमारी बातें रही। पर्यावरण कृषि को लेकर भी हमारी बातें रही। यही जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण का क्या संबंध है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे श्रोता साथियों को मनीषा और कशिश हम कहना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन आज विश्व की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसके कारण हिमनद पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। सूखा, बाढ़, चक्रवात और अत्यधिक गर्मी जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।
1: जी,
0: जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण का नहीं बल्कि श्रोता साथियों हम मनुष्य की सभ्यता के भविष्य का भी प्रश्न है। इसके समाधान के लिए सभी देशों और नागरिकों को मिलकर प्रयास करने होंगे।
1: बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात करें आर्थिक विकास के आधार की, तो देखते हैं जागृति जी कि कृषि, पर्यटन, मत्स्य पालन और अनेक उद्योग प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो आर्थिक विकास भी स्थायी रहेगा। ऐसे में दोस्तों पेड़ पौधे और जो वन होते हैं वो वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे तापमान नियंत्रित करते हैं, जल संरक्षण में मदद करते हैं, साथ ही पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने पर सूखा, बाढ़ और ज्यादा गर्मी जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में हम कह सकते हैं कि हमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर जोर देना होगा।
0: इसी के साथ हम देखते हैं कि पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति पाए जाते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से जीव विविधता कहा जाता है। साथियों, प्रत्येक जीव का प्रकृति में अपना विशेष महत्व होता है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि मधुमक्खियां परागण करती हैं, केचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, पक्षी कीट को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं तथा अन्य जीव जंतु है वो संतुलन बनाए रखते हैं।
1: जी,
0: यदि किसी एक प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाए जागृति जी, तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र भी प्रभावित हो सकता है।
2: बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि वृक्ष पर्यावरण के सबसे बड़े रक्षक हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जैसा कि मनीषा आपने पहले बताया था। वृक्ष वर्षा में सहायता करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं।
1: बिल्कुल
2: कशिश, पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध रखते हैं, हम सब जानते हैं, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं, इसीलिए वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है।
1: जी हाँ,
2: हम केवल पेड़ लगाने ही नहीं बल्कि उनकी देखभाल भी हमें करनी है ताकि ये बड़े होकर पर्यावरण को लाभ पहुंचा सके।
1: जी
2: तो श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना है, जल की बचत करनी है, प्लास्टिक का कम उपयोग करना है, ऊर्जा की बचत करनी है, कचरे का उचित प्रबंधन करना है, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना है, पर्यावरण संबंधी जागरूकताएं फैलानी है।
1: बिल्कुल,
2: ये जो छोटे छोटे प्रयास है मनीषा और कशिश, ये मिलकर हम करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
1: जी,
2: जब प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेगा श्रोता साथियों, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। हमारे यहाँ नदियों को साथियों माता, वृक्षों को देव तुल्य और पृथ्वी को माता का दर्जा दिया गया है।
0: जी हाँ,
1: साथ ही हमारे ऋषि मुनियों ने भी प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की शिक्षा ही दी है। इसी कारण से दोस्तों भारतीय परंपराओं में पर्यावरण संरक्षण के ढेर सारे संदेशों में देखने को मिलते हैं।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में युवा साथियों आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: यह हम सभी का कर्तव्य है। आज हम जो कदम उठाएंगे वही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। यदि जागृति जी हम पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे, स्वच्छता अपनाएंगे और हमारी प्रकृति का सम्मान करेंगे तो पृथ्वी आने वाले वर्षों तक जीवनदायिनी बनी रहेगी।
0: बिल्कुल,
1: हमें याद रखना चाहिए कि प्रकृति हमें जीवन जरूर देती है, इसलिए उसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। साथियों, एक पेड़ 100 पुत्रों के समान होता है, क्योंकि यह केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरी मानवता को जीवन देता है।
0: जी हाँ कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रकृति का अमूल्य उपहार है और मानव जीवन का आधार भी। यह हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान करता है। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो मानव जीवन सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल,
0: आज प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों में अत्यधिक दोहन

0: के कारण पर्यावरण संकट जैसी समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाए।
1: तो हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि पर्यावरण केवल प्रकृति का विषय नहीं है बल्कि मानव जीवन स्वास्थ्य विकास और भविष्य का आधार है। जिस प्रकार हम अपने परिवार और समाज की चिंता करते हैं मनीषा और कशिश, उसी प्रकार पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। प्रकृति हमें बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ दे देती है श्रोता साथियों, इसलिए उसका संरक्षण करना हमारा नैतिक दायित्व है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करें। यदि हम अभी से पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित पृथ्वी दे पाएंगे। तो श्रोता साथियों, हम प्रकृति के सच्चे मित्र बने, पेड़ लगाएं, जल बचाए, प्रदूषण कम करें और पर्यावरण संरक्षण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है।
2: बिल्कुल।
0: और जैसा कि हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर बातचीत कर रहे थे, उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा साथियों को ये बातें जरूर पसंद आई होंगी।
2: जी हाँ।
0: तो जैसा कि अब समय हो चला है और बातें भी पूरी हो चुकी है, तो कार्यक्रम से विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत सुनवाए यहाँ पर।
2: जी हाँ।
0: बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के साथ हम विदा लेते हैं। अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम पृथ्वी को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाते, बल्कि अपने बच्चों से उधार लेते हैं। यदि आज हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो कल प्रकृति हमारी रक्षा करेगी।
1: बिल्कुल,
0: एक पौधा, एक बूंद पानी की बचत, एक जागरूक कदम भी बदलाव की शुरुआत बन सकता है। कशिश और मनीषा, इसीलिए आज ही ये प्रण करें श्रोता साथियों कि हम प्रकृति के प्रहरी बनेंगे, अपनी धरती को हरा भरा और स्वच्छ जीवनदायी बनाए रखेंगे।
1: जी हाँ,
0: इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपनी राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को,
2: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को,
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: बहनों, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बार तेनू खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
4: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
5: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके। शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
6: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
4: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
5: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
4: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है परिवार और पृथ्वी की कड़ी है आप और हम। जैसा कि साथियों, जब हम परिवार की बात करते हैं तो हमारे मन में प्रेम, अपनापन, सहयोग और जिम्मेदारी जैसे भाव आते हैं अंजलि। वहीं जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो हमारे सामने प्रकृति, जल, जंगल, जमीन, हवा और जीवन का आधार दिखाई देता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि परिवार और पृथ्वी के बीच क्या संबंध है? सच तो ये अंजलि कि जिस प्रकार परिवार हमारे जीवन का आधार है, उसी प्रकार पृथ्वी समस्त जीवन का आधार है।
0: बिल्कुल।
1: और इन दोनों को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आप और हम।
0: जी हाँ, तो जागृति जी, इस विषय पर श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत के पहले गीत के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत कर रहे हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। हमारी बातें चल रही थी और हमने आपको विषय बताया था गीत से पहले कि आज हमारी बातचीत का विषय है परिवार और पृथ्वी की कड़ी है हम और आप। जैसा कि श्रोता साथियों, परिवार केवल चार दीवारों के भीतर रहने वाले लोगों का समूह नहीं है, ये संस्कारों, मूल्यों और जिम्मेदारियों का विद्यालय अंजलि। यहीं से हम सीखते हैं कि दूसरों की चिंता कैसे की जाए, संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाए और मिलजुल कर कैसे रहा जाए। यदि परिवार में बच्चों को प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी सिखाई जाए तो वे बड़े होकर पृथ्वी के सच्चे रक्षक बन सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि परिवार से ही शुरू होता है पृथ्वी की रक्षा का सफर।
0: जी हाँ,
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हम अक्सर सोचते हैं कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों, संस्थानों और बड़े अभियानों का काम है, लेकिन सच यह है कि पृथ्वी की रक्षा की शुरुआत हमारे घर के दरवाजे से होती है। हम अपने परिवार में जो आदतें अपनाते हैं जागृति जी, वही धीरे धीरे समाज की आदतें बनती जाती हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि घर में पानी बचाने की आदत है तो बच्चे भी पानी बचाने का महत्व समझेंगे। यदि घर में भोजन की बर्बादी नहीं होती है तो अगली पीढ़ी भी संसाधनों का सम्मान करना सीखेगी।
0: जी हाँ।
1: यदि घर में पौधे लगाए जाते हैं तो बच्चों के मन में भी प्रकृति के प्रति प्रेम पैदा होगा। इसी प्रकार परिवार केवल लोगों का समूह नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी पाठशाला है जहाँ पृथ्वी के प्रति जिम्मेदारी का पहला पाठ पढ़ाया जाता है।
0: बिल्कुल अंजलि, आज दुनिया अनेक पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन हो गया, बढ़ता प्रदूषण हो गया, जल संकट हो गया, जंगलों की कटाई हो गई, जैव विविधता के नुकसान हमारी पृथ्वी को कमजोर बना रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: इन समस्याओं का समाधान केवल सरकारों या बड़े संगठनों के पास नहीं है, इसका समाधान हमारे घर और परिवार से शुरू होता है। हम देखते हैं कि जब परिवार में बिजली की बचत की जाती है, पानी को व्यर्थ नहीं बहाया जाता, प्लास्टिक का कम उपयोग होता है और पेड़ लगाने की आदत विकसित होती है, तब एक छोटा सा परिवार भी पृथ्वी की सुरक्षा में बड़ा योगदान देता है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार हम देखते हैं अंजलि कि लोग सोचते हैं कि उनके अकेले के प्रयास से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन याद रखिए श्रोता साथियों, बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं।
1: जी जी।
0: यदि हर परिवार एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो लाखों पेड़ तैयार हो सकते हैं। यदि हर घर पानी बचाए तो करोड़ों लीटर पानी सुरक्षित किया जा सकता है।
1: जी जी।
0: यदि हर व्यक्ति अपने आसपास स्वच्छता रखे तो पूरा समाज स्वच्छ बन सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, महात्मा गांधी का स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था। उनका स्वराज आत्मनियंत्रण, जिम्मेदारी और प्रकृति के साथ संतुलन का संदेश देता है।
0: बिल्कुल,
1: सच्चा स्वराज श्रोता साथियों हमें सिखाता है कि हम केवल अपने हित के बारे में न सोचें, बल्कि उन लोगों और जीवों के बारे में भी सोचें जो हमारे बाद इस धरती पर रहेंगे। जब हम अपने परिवार के भविष्य की चिंता करते हैं तब हमें पृथ्वी के भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि यदि पृथ्वी स्वस्थ नहीं होगी तो कोई भी परिवार सुरक्षित नहीं रह सकेगा। जागृति जी, आज दुनिया कई पर्यावरणीय चुनौतियों

0: का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, जल स्रोत सूख रहे हैं, प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ रहा है, पेड़ कट रहे हैं, गर्मी हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है।
1: बिल्कुल,
0: इन समस्याओं का प्रभाव सबसे पहले हमारे परिवारों पर ही पड़ता है। जब पानी की कमी होती है तो घर प्रभावित होता है, जब फसल खराब होती है तो परिवार प्रभावित होता है, जब बीमारियां बढ़ती हैं तो परिवार प्रभावित होता है। इसलिए पर्यावरण की समस्या कोई दूर की समस्या नहीं, यह हमारे घर की समस्या है।
1: बिल्कुल अंजलि, हम कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कि परिवार हमें केवल जीना नहीं सिखाता बल्कि जिम्मेदारियां निभाना भी सिखाता है।
0: बिल्कुल,
1: जिस प्रकार हम अपने माता पिता, बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं उसी प्रकार हमें पृथ्वी का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि पृथ्वी भी हमारी एक बड़ी माँ है जो बिना किसी भेदभाव के सबको जीवन देती है। हम भोजन करते हैं, अन्न पृथ्वी से आता है, हम पानी पीते हैं तो प्रकृति की देन है, हम श्वास लेते हैं तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। इस तरह श्रोता साथियों हमारा हर पल पृथ्वी से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वास्तव में हम अपने ही भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करते हैं जागृति जी। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि एक व्यक्ति क्या ही बदल सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू हुए हैं।
1: बिल्कुल।
0: यदि एक परिवार एक पेड़ लगाए तो ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन यदि एक गांव के 100 परिवार ऐसा करें तो 100 पेड़ लगेंगे। यदि हर घर प्लास्टिक का उपयोग थोड़ा कम कर दे तो हजारों किलो कचरा कम हो सकता है। यदि हर व्यक्ति बिजली बचाए तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा बच सकती है। यही कारण है कि परिवार और पृथ्वी के बीच सबसे मजबूत कड़ी हम हैं। हमारे निर्णय ही पृथ्वी का भविष्य तय कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, जरा सोचिए कि हम अपने बच्चों के लिए धन, घर और जमीन छोड़ने की योजना बनाते हैं, लेकिन क्या जागृति जी, हम उनके लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और हरियाली भी छोड़ रहे हैं? भविष्य की पीढ़ियां हमसे यह नहीं पूछेगी कि हमने कितनी संपत्ति बनाई है।
1: बिल्कुल।
0: हमसे यह पूछेगी कि हमने उनके लिए कैसे धरती छोड़ी है। इसलिए बच्चों को केवल शिक्षा देना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें प्रकृति से जुड़ना भी सिखाना होगा, उन्हें पेड़ लगाना सिखाना होगा, उन्हें जल संरक्षण सिखाना होगा, उन्हें ये समझाना होगा कि प्रकृति कोई वस्तु नहीं बल्कि जीवन का आधार है।
1: बिल्कुल अंजलि, हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा प्रकृति और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना सिखाया है। वे जल स्रोतों की रक्षा करते थे, पेड़ों को पूजते थे, प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करते थे। आज आधुनिकता के दौर में हमें उनकी इन सीखों को फिर से अपनाने की जरूरत है। विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास नहीं जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य ही छीन ले।
0: बिल्कुल।
1: हमें ऐसा विकास चाहिए जो पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखे, और इस संतुलन की शुरुआत परिवार से होती है। श्रोता साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि सच्चा स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का नाम नहीं है। सच्चा स्वराज तब होता है जब हर नागरिक अपने कर्तव्य को समझे और समाज तथा प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए।
0: बिल्कुल।
1: जब हम अपने परिवार को संस्कारवान बनाते हैं और पृथ्वी की रक्षा करते हैं अंजलि, तब हम सच्चे अर्थों में स्वराज की भावना को मजबूत करते हैं। श्रोता साथियों, आप और हम इस बदलाव की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि हम बदलेंगे तो परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, और देश बदलेगा तो पूरी पृथ्वी ही सुरक्षित हो जाएगी।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, क्योंकि स्वराज अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियों की भी बात करता है। हमें अच्छा वातावरण चाहिए, लेकिन क्या हम स्वयं उसे स्वच्छ बनाने के लिए योगदान दे रहे हैं? ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। हमें हरियाली चाहिए, लेकिन श्रोता साथियों, क्या हम पेड़ लगाने का प्रयास कर रहे हैं? हमें जल चाहिए, लेकिन क्या हम जल बचा रहे हैं? श्रोता साथियों, स्वराज का अर्थ केवल अपेक्षा करना नहीं बल्कि स्वयं आगे बढ़कर योगदान देना भी है।
1: बिल्कुल।
0: चाहे गांव हो या शहर, दोनों पृथ्वी के भविष्य से जुड़े हुए हैं। गांव प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, तो शहर जिम्मेदार उपभोग और कचरा प्रबंधन के माध्यम से योगदान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: हर स्थान पर परिवार ही परिवर्तन की पहली इकाई है। जब परिवार जागरूक होगा तब समाज जागरूक होगा, और जब समाज जागरूक होगा तब पृथ्वी सुरक्षित होगी।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि जब भी हम अपने परिवार के साथ बैठे, एक पल के लिए जरूर सोचिए श्रोता साथियों, कि जिस धरती पर हम खड़े हैं वही हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी घर है। यदि आज हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो कल हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी स्वच्छ हवा में सांस ले सकेंगे।
0: बिल्कुल।
1: निर्मल जल पी सकेंगे और हरियाली से भरी दुनिया का आनंद ले पाएंगे। याद रखिए श्रोता साथियों, परिवर्तन किसी बड़े मंच से नहीं आता बल्कि अपने घर के आंगन से शुरू होता है।
0: जी जी।
1: एक पौधा लगाना, पानी बचाना, स्वच्छता बनाए रखना और प्रकृति के प्रति सम्मान रखना, ये छोटे छोटे कदम ही भविष्य की बड़ी उम्मीद बनते हैं। जब परिवार जागरूक बनता है तब समाज बदलता है, जब समाज बदलता है तब राष्ट्र आगे आता है, और जब राष्ट्र आगे बढ़ता है तब पूरी पृथ्वी मुस्कुराती है, जैसा कि हमने पहले बताया था।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोता साथियों, आज केवल सोचने का नहीं बल्कि कुछ करने का है। हम ये प्रण ले कि अपने परिवार को अच्छे संस्कार देंगे और अपनी धरती को बेहतर भविष्य देंगे, क्योंकि हम केवल इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग नहीं हैं बल्कि इसके संरक्षक भी हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम अक्सर सोचते हैं कि पृथ्वी को बचाने का काम बहुत बड़ा है, ये बड़े बड़े लोग ही कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है श्रोता साथियों कि पृथ्वी का भविष्य करोड़ों छोटे छोटे निर्णयों से बनता है, जो हर दिन हमारे घरों में ही मिल जाते हैं। जब एक माँ भोजन की बर्बादी रोकती है तब वह पृथ्वी की रक्षा कर रही होती है।
1: बिल्कुल।
0: जब एक पिता बच्चों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रहा होता है तब वह पृथ्वी की रक्षा कर रहा होता है। जब बच्चे पानी बचाना सीखते हैं तब वे पृथ्वी की रक्षा कर रहे होते हैं।
1: जी हाँ।
0: यानी कि पृथ्वी की सुरक्षा का सबसे मजबूत अभियान किसी बड़े मंच से नहीं बल्कि परिवार से शुरू होता है। हम यह संकल्प लें कि हम केवल अपने परिवार की खुशहाली तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उस धरती की भी चिंता करेंगे जो हम सभी का सबसे बड़ा परिवार है। याद रखिए श्रोता साथियों कि हम पृथ्वी से अलग नहीं, हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, हमारी खुशियाँ, हमारा भविष्य इसी धरती से जुड़ा हुआ है जागृति जी। इसलिए यदि परिवार को सुरक्षित रखना है तो पृथ्वी को सुरक्षित रखना होगा
1: जी हाँ।
0: और यदि पृथ्वी को सुरक्षित रखना है तो हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होगी
1: जी हाँ अंजलि। तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे श्रोताओं, पृथ्वी की रक्षा का काम किसी एक दिन का अभियान नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। जिस प्रकार हम अपने परिवार को प्रेम, सुरक्षा और सम्मान देते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी धरती को भी संरक्षण, संवेदनशीलता और समर्पण देना होगा।
0: बिल्कुल,
1: हम अपने घर से पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत करेंगे, संसाधनों का सम्मान करेंगे, पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ेंगे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि कहा गया है कि परिवार को जागरूक बनाकर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम बदलेंगे तो युग बदलेगा और हम संभलेंगे तो कल संभल जाएगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो बातें कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी हो गई हैं और अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ। मनीषा और कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है वागड़ का औषधीय और सांस्कृतिक धरोहर वृक्ष जामुन को लेकर। जानेंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से कि जामुन किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और औषधीय गुणों से भरपूर जामुन जो है वो हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी हम आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से करने वाले हैं, लेकिन जैसा कि हमारे श्रोता साथी जानते हैं कि शुरुआत में हम उन्हें पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं।
2: बिल्कुल,
1: तो क्या ना आज भी शुरुआत पहले गीत के साथ की जाए।
2: जी हाँ
0: जी बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं जामुन से स्वास्थ्य लाभों को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी और कशिश, हम देखते हैं कि जामुन में अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा श्रोता साथियों, जामुन में पानी की मात्रा अधिक होती है,
2: बिल्कुल,
0: जिससे शरीर में नमी बनी रहती है और कम कैलोरी वाला होने के कारण यह फल वजन नियंत्रित करने में भी सहायक होता है।
1: जी हाँ।
0: जामुन में मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि हमारे देश भारत में जामुन का विशेष महत्व है।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि अंजलि जी, गांव में लोग वर्षों से जामुन का सेवन करते आ रहे हैं। दोस्तों, इस फल के बीज, पत्तियां और छाल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। हम देखते हैं कि ये जो फल है वो स्वाद में हल्का खट्टा और मीठा होता है,
2: बिल्कुल,
1: जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को भी पसंद आता है।
2: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। प्रकृति ने हमें अनेक ऐसे फल दिए हैं जो स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य का खजाना भी है। आज हम जैसा कि बात कर रहे हैं ऐसे फल की जिसका नाम सुनते ही जीभ पर हल्की सी मिठास और कसेलापन हमें महसूस होने लगता है।
1: जी हाँ।
2: श्रोता साथियों, जैसा कि हम जामुन को लेकर बात कर रहे हैं, तो बरसात के मौसम में मिलने वाला जामुन सिर्फ एक फल नहीं है बल्कि ये सेहत का खजाना है। गाँव में अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि अगर मौसम में जामुन का सेवन किया जाए तो शरीर को कई तरह के लाभ मिलते हैं। हम देखते हैं कि जामुन भारत में पाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मौसमी फल है। इसका रंग जो है वो गहरा बैंगनी और काला होता है, जैसा कि सभी श्रोता साथी जानते हैं। जामुन का सबसे चर्चित लाभ यह है कि यह रक्त शर्करा को नियंत्रित रखने में मदद करता है। जामुन के बीज का चूर्ण भी कई लोग उपयोग करते हैं। आयुर्वेद में इसका विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि मधुमेह के मरीजों को किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले चिकित्सक की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। जामुन में ऐसे तत्व पाए जाते हैं श्रोता साथियों जो शरीर में ग्लूकोज के उपयोग को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर हम बात करें कि ये पाचन तंत्र को कैसे मजबूत बनाता है, तो साथियों हम देखते हैं कि आज के अनियमित जीवन शैली और गलत खान पान के कारण पाचन संबंधी समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं।
2: बिल्कुल,
0: जामुन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें मौजूद श्रोता साथियों फाइबर भोजन को पचाने में सहायता करता है। साथ ही हम देखते हैं कि यह कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है। जामुन पेट की गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक होता है। इसके सेवन से श्रोता साथियों आंतों की कार्य क्षमता बेहतर होती है और भोजन का पाचन भी सुचारू रूप से होता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की, तो दोस्तों हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जितनी मजबूत होगी हम उतने ही कम बीमार पड़ेंगे।
2: बिल्कुल
1: अंजलि जी और मनीषा, जामुन में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि ये शरीर को संक्रमणों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं।
2: बिल्कुल,
1: और मौसम बदलने पर होने वाले जो सामान्य बीमारियां हैं उनसे भी हमारे बचाव करने में सहायक होते हैं जामुन।
2: बिल्कुल जी हाँ। कशिश आपने सही कहा। हम देखते हैं कि ये हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। जामुन में पाए जाने वाला पोटेशियम रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद कर सकता है।
1: जी जी।
2: साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में हानिकारक तत्वों के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि यदि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली के साथ जामुन का सेवन किया जाए तो ये हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से बातें चली ही रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि बहुत अच्छी बातें चल रही है जामुन से स्वास्थ्य पर होने वाले फायदों को लेकर, और गीत से पहले हम कुछ फायदे जान ही रहे थे अंजलि जी।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हमने जाना था कि ये मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक होता है, ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में सहायक होता है।
1: बिल्कुल।
0: अब यहीं अगर बात करें खून की कमी की, तो जामुन में आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है।
2: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि आयरन जो है वो शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जरूरी होता है साथियों।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में जिन लोगों में खून की कमी या फिर कमजोरी की समस्या देखी जाती है, उनके लिए जामुन का सेवन बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है।
2: जी हाँ
0: दोस्तों, आयरन शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन पहुँचाने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति अधिक ऊर्जावान महसूस करता है।
2: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि जामुन में मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा की सेहत के लिए भी लाभकारी होते हैं। यह त्वचा को प्राकृतिक रूप से चमक प्रदान करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और समय से पहले होने वाली झुर्रियों को भी कम करने में मदद करते हैं।
0: जी जी।
2: हम देखते हैं कि जामुन शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है, जिससे त्वचा साफ और सुंदर दिखाई देती है। श्रोता साथियों, नियमित सेवन से मुहासों और त्वचा संबंधी जो समस्याएं होती है उनमें भी हमें अनियमित जीवन शैली और गलत खान पान के कारण पाचन संबंधी समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं।
1: बिल्कुल।
2: जामुन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें मौजूद श्रोता साथियों फाइबर भोजन को पचाने में सहायता करता है।
1: बिल्कुल।
2: साथ ही हम देखते हैं कि यह कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है। जामुन पेट की गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक होता है। इसके सेवन से श्रोता साथियों आंतों की कार्य क्षमता बेहतर होती है और भोजन का पाचन भी सुचारू रूप से होता है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की, तो दोस्तों हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जितनी मजबूत होगी हम उतने ही कम बीमार पड़ेंगे।
1: बिल्कुल।
0: अंजलि जी और मनीषा, जामुन में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि ये शरीर को संक्रमणों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और मौसम बदलने पर होने वाले जो सामान्य बीमारियां हैं उनसे भी हमारे बचाव करने में सहायक होते हैं जामुन।
1: बिल्कुल। जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि ये हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। जामुन में पाए जाने वाला पोटेशियम रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद कर सकता है।
0: जी जी।
1: साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में हानिकारक तत्वों के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि यदि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली के साथ जामुन का सेवन किया जाए तो हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है।
2: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से बातें चल ही रही हैं।
0: बिल्कुल।
2: और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि बहुत अच्छी बातें चल रही है जामुन से स्वास्थ्य पर होने वाले फायदों को लेकर, और गीत से पहले हम कुछ फायदे जान ही रहे थे अंजलि जी।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हमने जाना था कि ये मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक होता है, ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में सहायक होता है।
1: बिल्कुल।
0: अब यही अगर बात करें खून की कमी की, तो जामुन में आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है।
2: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि आयरन जो है वो शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के

0: त्वचा साफ और सुंदर दिखाई देती है। श्रोता साथियों, नियमित सेवन से मुहासों और त्वचा संबंधी जो समस्याएं होती है उनमें भी हमें लाभ मिलता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करें हड्डियों की मजबूती की तो श्रोता साथियों, जामुन में कैल्शियम और अन्य खनिज तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए मजबूत हड्डियां बहुत आवश्यक है। संतुलित भोजन के साथ जामुन का सेवन हड्डियों के लिए लाभकारी माना जाता है।
0: जी हाँ।
1: कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से मनीषा और कशिश कि जामुन में मौजूद पोषक तत्व आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी योगदान दे सकते हैं। आजकल मोबाइल और टीवी के बढ़ते उपयोग के कारण आंखों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। ऐसे में पौष्टिक फलों का सेवन आंखों के लिए लाभदायक हो सकता है।
0: बिल्कुल जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं एक अच्छा स्वास्थ्य केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी होना चाहिए। जामुन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमारे शरीर की थकानी उनको भी कम करते हैं। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मानसिक तनाव भी कम होता है। संतुलित आहार में जामुन को शामिल करने से व्यक्ति अधिक ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करता है।
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल, आपने सही कहा। वहीं अगर लीवर के स्वास्थ्य की हम बात करें तो देखते हैं कि लीवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो श्रोता साथियों विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। अंजलि जी, जामुन में मौजूद पोषक तत्व लीवर के सामान्य कार्यों को समर्थन करते हैं जिससे हम देखते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार के साथ जामुन का सेवन लीवर के लिए भी जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: यहीं अगर बात की जाए मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभावों की तो जैसा कि हम सभी ने सुनाई है और हम सभी जानते भी हैं, स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन भी जरूरी है। जामुन में पाए जाने वाले अलग अलग पोषक तत्व साथियों शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
1: बिल्कुल,
2: कहा जाता है कि जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मानसिक कार्य क्षमता और उत्साह भी हमारा बेहतर बना रहता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम ढेर सारे स्वास्थ्य लाभ को जान पाए। अब यही बात आती है कि जामुन का सेवन कैसे करें। तो श्रोता साथियों, ताजे जामुन सीधे खाए जा सकते हैं, जामुन का रस बनाया कर खाया जा सकता है, जामुन का सिरका भी उपयोग में लिया जा सकता है। इसी के साथ जामुन के बीजों का चूर्ण आयुर्वेदिक उपयोग में लिया जाता है। जामुन से शरबत और अन्य पेय पदार्थ भी तैयार किए जाते हैं, लेकिन किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन उचित नहीं होता। संतुलित मात्रा में सेवन करना ही सबसे अच्छा तरीका है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जामुन केवल एक मौसमी फल नहीं है बल्कि प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। यह हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य की राह अक्सर हमारे खेतों, बागों और स्थानीय खाद्य पदार्थों से होकर गुजरती है। आज जब बाजार में रंग बिरंगे पैकेट और कृत्रिम पेय पदार्थ की भरमार है, तब जामुन जैसे प्राकृतिक फल हमें सादगी, पोषण और संतुलन का संदेश देते हैं।
0: जी हाँ।
1: हमारी पुरानी पीढ़ियां मौसमी फलों के महत्व को महत्व देती है क्योंकि वे जानते हैं कि प्रकृति हर मौसम में शरीर की जरूरत के अनुसार भोजन उपलब्ध कराती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि जामुन प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के लिए अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। साथियों, इसमें मौजूद विटामिन, खनिज, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट शरीर को अनेक प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: मधुमेह नियंत्रण, पाचन सुधार, रक्त वृद्धि, हृदय सुरक्षा, त्वचा की देखभाल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने जैसे अनेक गुण इसे विशेष बनाते हैं। आज श्रोता साथियों, आवश्यकता है कि कृत्रिम खाद्य पदार्थों के स्थान पर प्राकृतिक और पौष्टिक फलों को अपने जीवन में हिस्सा बनाएं। जामुन का नियमित और संतुलित सेवन स्वस्थ जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए अंजलि जी और कशिश, जामुन को केवल एक मौसमी फल न समझकर स्वास्थ्य का प्राकृतिक रक्षक मानना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: यह स्वस्थ, सशक्त और जागरूक समाज की पहचान है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम जान पाए वागड़ का औषधीय और सांस्कृतिक धरोहर वृक्ष जामुन के फायदों को लेकर। आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
2: जी हाँ अंजलि जी,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम और हमारी स्वास्थ्यप्रद बातें अभी ही समाप्त होती है। अंत में आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे साथियों कि जामुन सिर्फ एक फल नहीं है बल्कि हमारी सेहत का प्राकृतिक खजाना है। इसका हर दाना स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी उपहार है श्रोता साथियों।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में हम सभी मिलकर इस मौसम में हमारी थाली में जामुन को जगह दें और प्रकृति के इस अनमोल वरदान का लाभ उठाएं। याद रखिए दोस्तों, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़ी सेहत बनाती है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में आप जामुन खाइए, स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाइए।
2: जी हाँ कशिश, इन्हीं स्वास्थ्यप्रद बातों के साथ में हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी जो भी बातें रहीं, गीत संगीत रहे, वो श्रोता साथियों को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: बिल्कुल,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
2: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
3: नमस्कार।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: जागृति बुंद, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाए
1: नाना अंजलि बुंद हूँ था का
0: अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थई जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुंद, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बुंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बुंदो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व अनुकरो भोजन होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनो, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: साथियों, जल जंगल और जमीन बचाओ, आने वाला कल सजाओ, प्रकृति का करो सम्मान, यही है जीवन की पहचान। धरती माँ का यही पुकार है, पर्यावरण रखो सदा बरकरार, एक पेड़ 100 सुखों का आधार, आओ करें इसका मिलकर सत्कार। आप सभी को वागड़ रेडियो परिवार की तरफ से पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार कीजिएगा साथियों हम दोनों का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर हाजिर हो गए हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, जैसा कि आज कार्यक्रम की शुरुआती पंक्तियों से ही हमारे श्रोता साथियों को पता चल गया होगा कि आज हमारी कार्यक्रम में बातचीत का विषय है विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, पर्यावरण वो प्राकृतिक आवरण है जो हमें जीवन प्रदान करता है। वायु, जल, भूमि, वन, पर्वत, नदियां, पशु पक्षी और समस्त जैव विविधता मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं।
1: बिल्कुल
0: मनुष्य का जीवन पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर है। यदि पर्यावरण संतुलित रहेगा तो जीवन स्वस्थ, सुरक्षित और सुखद रहेगा। लेकिन यदि पर्यावरण प्रदूषित होगा तो इसका सीधा प्रभाव मानव जीवन, कृषि, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि पर्यावरण किस तरीके से महत्वपूर्ण है और इसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
0: जी हाँ,
1: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम के पहले गीत के साथ हम मनोरंजन करवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर। अंजलि जी, हम देखते हैं कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। जल, वायु, भूमि, वन, पर्वत, नदियाँ और जीव जंतु सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: मानव जीवन का अस्तित्व पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। यदि पर्यावरण संतुलित और स्वस्थ रहेगा साथियों, तो मानव जीवन भी स्वस्थ और सुरक्षित और सुखमय रहेगा।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वहीं वर्तमान समय में अंजलि जी, हम देखते हैं कि प्रदूषण और वनों की कटाई, जल स्रोतों का संरक्षण और प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन चुका है।
1: बिल्कुल,
0: इन समस्याओं के प्रति श्रोता साथियों, लोगों को जागरूक करने और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति प्रेरित करने के लिए हर वर्ष हम देखते हैं कि अंजलि जी, आज ही के दिन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल मनीषा, पर्यावरण वह प्राकृतिक आवरण है जो हमें जीवन प्रदान करता है। वायु, जल, भूमि, वन, पर्वत, नदियाँ, पशु पक्षी और समस्त जीव विविधता मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: मनुष्य का जीवन पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर है। यदि पर्यावरण संतुलित रहेगा तो जीवन स्वस्थ, सुरक्षित और सुखद रहेगा। लेकिन यदि पर्यावरण प्रदूषण होगा तो इसका सीधा प्रभाव मानव जीवन, कृषि, पशुपालन और प्राकृतिक साधनों पर पड़ेगा। इसी महत्व को समझाते हुए प्रत्येक वर्ष आज के दिन यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, यह दिन हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है और पर्यावरण के लिए हमें प्रेरित करता है।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत वर्ष 1972 में हुई, जब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पर्यावरण से संबंधित एक संपूर्ण महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण की जो आवश्यकता है वो वैश्विक स्तर पर चर्चा में आई। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 1974 से यह नियमित रूप से मनाया जाने लगा। आज यह दुनिया के कह सकते हैं कि 150 से अधिक देशों में मनाया जाता है।
0: श्रोता
1: साथियों, कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का सबसे बड़ा वैश्विक अभियान ये बन चुका है। इसलिए हम कह सकते हैं मनीषा कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि पर्यावरण केवल पेड़ पौधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की संपूर्ण व्यवस्था का आधार है।
1: बिल्कुल,
0: मनुष्य जो हवा में सांस लेने के लिए उपयोग करता है, जो पानी पीता है, जो भोजन ग्रहण करता है और जिस भूमि पर रहता है, वह सब पर्यावरण का ही हिस्सा है।
1: जी जी,
0: स्वस्थ पर्यावरण हमें शुद्ध वायु प्रदान करती है। यह जलवायु परिवर्तन को संतुलित बनाए रखता है साथियों। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा देता है।
1: बिल्कुल,
0: जैव विविधता का संरक्षण करता है और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भी यह अपना काम पूरी निष्ठा से करता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि श्रोता साथियों पर्यावरण असंतुलित हो जाए तो मानव स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, कृषि और सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पर्यावरण संरक्षण केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि आज की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, पर्यावरण हमारे अस्तित्व का आधार है। शुद्ध वायु हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है, जल जीवन का आधार है, भूमि जो है वो भोजन उत्पादन का माध्यम है और वन जो है वो जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि पर्यावरण का महत्व जो है वो कई रूपों में देखा जा सकता है।
0: जी हाँ,
1: शुद्ध हवा, स्वच्छ जल प्रदान करता है, कृषि और खाद्य सुरक्षा का आधार है, जैव विविधता को संरक्षित रखता है, जलवायु संतुलन बनाए रखता है, प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करता है और मानव स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में सहायक होता है।
0: जी हाँ,
1: यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए श्रोता साथियों, आज पर्यावरण अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन, इन सब के कारण मनीषा हम देखते हैं कि पर्यावरण के सामने कई चुनौतियां आई हैं। इन सारी चीजों को दूर करके हमें हमारे पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर बातें चल ही रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आज हम जान रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर कि पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। इसी बीच अब हमारे कार्यक्रम से विषय विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सर नमस्कार।
1: नमस्ते सभी सुनने वाले श्रोता भाइयों को।
0: बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: आपका और वागड़ रेडियो का धन्यवाद।
0: सर, जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, और जैसा कि आप भी पर्यावरण को लेकर ढेर सारे कार्य करते हैं, आप किसानों के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो यहीं सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वागड़ में जीव विविधता संरक्षण के क्या स्थानीय उपाय हैं जो हमारे लिए समाधान का रूप ले सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में क्या ऐसी चीजें हमारे वागड़ क्षेत्र में है जिसकी विविधता से हम हमारे पर्यावरण के प्रदूषण को रोक सकते हैं।
1: तो सभी सुनने वाले श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूं कि जब हम पर्यावरण दिवस की बात करते हैं, हमारे पर्यावरण की बात करते हैं, तो सबसे पहले यदि हम बोले पर्यावरण संरक्षण या हम बोले विविधता का संरक्षण, तो ये दोनों बातें एक ही होती है।
0: बिल्कुल।
1: पर्यावरण बोलने में एक शब्द है, पर यदि इसका स्वरूप देखा जाए तो वो बहुत विस्तृत है।
0: बिल्कुल।
1: पर्यावरण को यदि हम दो टुकड़ों में देखें कि परिधन आवरण, तो हमारी जो पृथ्वी है ये किससे ढकी हुई है।
0: जी जी।
1: तो इसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट, पानी, बीज, मिट्टी, ये सभी कुछ इसमें शामिल है।
0: बिल्कुल।
1: और इसी के संरक्षण की हम बात करते हैं। तो हम यदि विशेष रूप से हमारे वागड़ के आदिवासी संस्कृति को देखें, तो इसमें हमारी जो प्राकृतिक संपदा है, हमारी जो धरोहर है,
0: जी जी,
1: या उनकी पारंपरिक जीवन पद्धति है,
0: बिल्कुल,
1: जिसमें छोटी छोटी नदियां, नाले, जंगल, कई तरह के छोटे बड़े पेड़ पौधे, इसी के साथ में पशुधन और खेती पे आधारित हमारी संस्कृति।
0: बिल्कुल।
1: तो इस क्षेत्र को सदियों से एक जैविक जीवन तंत्र के रूप में इसने विकसित किया है।
0: बिल्कुल।
1: और विशेष रूप से यहाँ के जो भील समुदाय हैं, वो प्रकृति के उपभोक्ता नहीं है, वो ही इसके संरक्षक भी हैं।
0: बिल्कुल।
1: उनके जीवन में जल, जंगल, जमीन, जीव, बीज, जब हम इनकी बात करते हैं तो ये उनके लिए संसाधन नहीं है, ये उनके जीवन, उनकी संस्कृति, उनकी आस्था और आजीविका का आधार है।
0: बिल्कुल सर।
1: यदि हम बड़े परिदृश्य में इसको देखें, यानी कि हम पूरी दुनिया की जब बात करते हैं,

0: तो ये दुनिया जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बहुत जूझ रही है। इसमें मिट्टी का कटाव, पानी का प्रदूषण, जैव विविधता का कम होना,
1: बिल्कुल,
0: और इन्हीं से निकल के हमारे सामने जो गंभीर चुनौती आती है वो हमारे स्वास्थ्य की आती है।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरह की चुनौती से ये दुनिया लड़ रही है। और तब यदि हम वागड़ के आदिवासी समाज के पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति के साथ उनके संबंध को देखते हैं तो ये हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देता है।
1: बिल्कुल सर,
0: ये क्षेत्र हमको बताता है कि विकास का वास्तविक अर्थ केवल आर्थिक यानी कि पैसे को बढ़ा लेना नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन, सामूहिक सहभागिता और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे जो संसाधन है उसका संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण या समाधान की तरफ जो है हमें लेके जाता है।
2: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो वागड़ क्षेत्र है वहाँ का विशेषकर जो भील आदिवासी समुदाय है वो किस तरीके से प्रकृति से जुड़ा हुआ है और उसके संरक्षण को लेकर उनके जो प्रयास है वो निरंतर चलते ही रहते हैं। यहीं सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जैव विविधता का क्या अर्थ है और हम इसे कैसे महत्व के रूप में देख सकते हैं।
0: पर्यावरण कहें या पर्यावरण की विविधता, जिसमें जैव विविधता उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, तो हमारी धरती पे पाए जाने वाले सभी जीव, वनस्पति, सूक्ष्म जीव और हमारा पारिस्थितिक तंत्र,
1: बिल्कुल,
0: जिसमें अनेक प्रकार की विविधता हमको देखने को मिलती है। जैसे 3 से 4 तरह के मौसम हमको देखने को मिलते हैं, ठंड, गर्मी, बरसात। इसमें पाए जाने वाले पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट, विभिन्न तरह की फसलें, उनके बीज, मिट्टी के जीवाणु, नदियां, जंगल, प्राकृतिक आवास, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब किसी क्षेत्र में जैव विविधता अधिक होती है तो वह क्षेत्र पर्यावरणीय संकटों का सामना अधिक मजबूती से कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: अनेक तरह की फसलें होने पर, सूखा या बीमारी आने पर कुछ न कुछ उत्पादन हमको मिल ही जाता है।
1: बिल्कुल सर,
0: जंगलों में कई तरह के पेड़ होने से मिट्टी और जल का संरक्षण तो बेहतर होता ही है।
1: जी जी,
0: अलग अलग जीव जंतु की खाद्य श्रृंखला इससे संतुलित रहती ही है। इसी के साथ ये हमारे लिए भी पोषण का और हमारी जरूरतों का एक बड़ा आधार है।
1: बिल्कुल,
0: तो अब अगर हम हमारे वागड़ क्षेत्र की विविधता की बात करें तो यहाँ केवल पर्यावरण की सुरक्षा नहीं बल्कि समुदाय की आजीविका, पोषण, स्वास्थ्य और संस्कृति, इन सभी को ये मजबूत बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: जंगलों से समुदाय को फल, फूल, लकड़ी, चारा, औषधियाँ यानी कि दवाई, लघु वनोपज, कई तरह की चीजें मिलती है।
1: जी जी,
0: इसी के साथ खेतों में उगने वाली कई तरह की फसलें जो परिवार के पोषण का मुख्य आधार है और इन्हीं से हमारे पशुधन के दूध, खाद और आर्थिक सुरक्षा भी जो है सुनिश्चित होती है।
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: यदि हम देखें कि हमारी जैव विविधता कम होती है या खत्म होने की तरफ जाती है तो केवल पेड़ या जीव ही समाप्त नहीं होंगे, एक समय आएगा जब पूरा मानव जीवन या उसका तंत्र प्रभावित होना शुरू होगा।
2: बिल्कुल,
0: हम देख रहे हैं कि पानी का जो जमीनी स्तर है वो कम होता जा रहा है, हमारे नदी नालों में पहले की अपेक्षा अब कम समय तक पानी रुकता है।
2: बिल्कुल,
0: किन्हीं कारणों से हमारी जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो कम होती जा रही है।
2: जी जी,
0: खेती पे संकट बढ़ रहा है क्योंकि उत्पादन कम हो रहा है।
2: बिल्कुल,
0: खेती की लागत बढ़ रही है, पशुधन कम होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जीव विविधता का जो प्रभाव है वो हमारे पशुधन पे भी हो रहा है, जिसकी वजह से उनका कमजोर होना या उनका दूध कम होना ये एक बड़ा पर्यावरणीय कारण है।
2: बिल्कुल,
0: तो इसी के चलते जीव विविधता संरक्षण को केवल हम पर्यावरण का मुद्दा नहीं मान सकते, बल्कि ये एक सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रश्न है।
2: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आप हमें बहुत अच्छी तरीके से ये बता पा रहे हैं कि जैव विविधता का क्या अर्थ है और किस तरीके से ये हमारी आर्थिक चीजों से जुड़ा हुआ है, और साथ ही किस तरीके से पर्यावरण का संरक्षण नहीं होता है, यानी कि जैव विविधता का संरक्षण नहीं होता है तो समुदाय पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, प्रकृति पर, पेड़ों पर, जीव पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो बातें कार्यक्रम में मनीषा हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी चल रही है। आगे भी सर हमारी आपसे बातें यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी करते हैं मनोरंजन एक प्यारे से गीत के साथ में।
3: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं और हम उनसे बहुत अच्छी तरीके से ये जान पा रहे हैं कि हमारा जो वागड़ क्षेत्र है उसकी जैव विविधता का हमारे जीवन में क्या महत्व है और किस तरीके से ये जैव विविधता जो हमारे यहाँ के समुदाय साथी हैं वो बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सी बार कुछ ऐसे कारण होते हैं, जागरूकता की कमी होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत हो जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: कार्यक्रम में ढेर सारी बातें तो चल ही रही हैं। यही सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जल जीवन और जीव विविधता का क्या महत्व है।
2: जी बिल्कुल, तो जब हम पर्यावरण या विविधता के संबंध में पानी की बात करते हैं तो पानी सिर्फ हमारे लिए जरूरी नहीं है।
0: बिल्कुल,
2: पानी हर क्षेत्र के लिए, हर जीव के लिए और कुछ परिस्थितियों में जो अजीव हैं उनके लिए भी जरूरी है।
0: बिल्कुल सर,
2: पर वागड़ क्षेत्र में पानी का महत्व इसलिए और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ की अधिकांश जो खेती है वो वर्षा जल पे आधारित होती है।
0: जी
2: है। तो पानी पे इसकी निर्भरता बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब यदि बारिश का असर हम कहें तो सीधा सीधा हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है।
0: बिल्कुल,
2: इसलिए बारिश की हर बूंद यहाँ जीवन का आधार मानी जाती है।
0: जी,
2: आदिवासी समाज ने पारंपरिक रूप से जल संरक्षण के कई तरीके खोजे हैं।
0: जी हाँ,
2: जैसे तालाब, वो बड़े या छोटे हो सकते हैं, कुएं, खेतों के आसपास छोटी पाल, खेत के अंदर छोटे तालाब जिसको हम खेत तालाब बोलते हैं, मेड़बंदी, और पहाड़ों से उतर के आने वाले पानी को धीमा करने और रोकने के लिए कई तरह की जो है पहाड़ी संरचनाएं बनाई जाती है।
0: बिल्कुल,
2: जिससे भूमिगत जल भी बढ़ता है और मिट्टी का कटाव रुकने के साथ साथ ये हमारे आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं इकट्ठा हो पाता है।
0: बिल्कुल,
2: तो जब जंगल सुरक्षित रहते हैं तो बारिश का पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर उतरता है, इससे जमीन का जो पानी का स्तर है वो बढ़ता है, नदियां लंबे समय तक बहती रहती हैं या उनमें पानी रहता है, और खेतों की नमी बनी रहती है।
0: जी हाँ,
2: जिसके कारण आने वाली फसल को एक बड़ा सहारा मिलता है।
0: बिल्कुल,
2: तो जैसे जैसे जंगल कम हो रहे हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ने लगा है और इससे पानी जो है तेजी से बह के निकल जाता है।
0: जी बिल्कुल,
2: तो कई बार इससे आने वाले समय में जो है सूखे की स्थिति बनती है या पानी का जो है संकट होता है।
0: बिल्कुल,
2: तो वागड़ के कई गांवों में आज भी वर्षा जल को सामुदायिक संपत्ति माना जाता है।
0: जी हाँ,
2: गांव के तालाब केवल उनकी सिंचाई का साधन नहीं है बल्कि उनके सामाजिक जीवन का केंद्र है। हमारे पशुधन वहीं पानी पीते हैं, महिलाओं के कई सारे घरेलू कार्य तालाब पर होते हैं, जैसे कपड़े धोना और घर के कई सारे काम। ज्यादातर हम देखें तो तालाबों के आसपास खेल मैदान होते हैं जहां बच्चे खेलते हैं। तो ये सामुदायिक संस्कृति जो पानी से इतनी जुड़ी हुई है ये समुदाय को जल संरक्षण के प्रति जिम्मेदार बनाती है और ये हमको हमारे वागड़ क्षेत्र में देखने को मिलता है।
0: जी हाँ,
1: बिल्कुल।
2: तो जल पर्यावरण विविधता का संबंध इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये एक बहुत गहरा रिश्ता है।
0: बिल्कुल,
2: यदि पानी होगा तो जंगल होंगे, घास उगेगी, पशुओं को चारा मिलेगा, पत्तियां मिलेगी, मिट्टी में जो है सूक्ष्म जीव जिंदा रहेंगे और खेती सफल होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर।
2: दूसरी तरफ यदि पानी की परेशानी बढ़ेगी तो सबसे पहले हमारा समुदाय प्रभावित होगा, उनका सामाजिक जीवन, उनका व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होगा। तो आज आधुनिक विकास के कारण हमारे जो जल स्रोत हैं उन पे दबाव बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल जी हाँ।
2: क्योंकि कहीं ना कहीं गहरे बोरवेल, कुछ रासायनिक प्रदूषण और अनियोजित जल का उपयोग, यानी कि जरूरत से अधिक सिंचाई या पानी का मितव्ययता से उपयोग न करना, ये हमारे जल चक्र को प्रभावित करता है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हमारी जो पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियां हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए। ये आज के समय की एक बड़ी मांग है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि किस तरीके से इन सारी चीजों का महत्व हमारे जीवन में है, जैसा कि हमने पानी के बारे में जाना, वैसे ही हम देखते हैं कि मिट्टी, जीव, बीज, इन सभी का भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यही सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आदिवासी पारंपरिक जो ज्ञान है उसकी क्या भूमिका है पर्यावरण संरक्षण को लेकर। जैसा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में ही जान पाए कि हमारे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनका प्रकृति से जुड़ाव बहुत ज़्यादा अधिक है, ऐसे में उनके पारंपरिक जो ज्ञान है वो कैसे हमारे प्रकृति के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल
2: श्रोताओं, यदि हम

0: यहाँ पे जंगल की बात करें तो जंगल सिर्फ हमारी सुविधाओं से बढ़ के जंगल को प्रकृति के सुरक्षा कवच के रूप में देखा जाता है।
1: बिल्कुल जी हाँ।
0: तो वागड़ के जंगल केवल पेड़ों का एक झुंड या समूह नहीं है, बल्कि यहाँ के समुदाय के जीवन, संस्कृति और इसी के साथ साथ उनकी अर्थव्यवस्था का आधार है।
1: बिल्कुल।
0: जंगल पानी को अपनी तरफ खींचते हैं, जंगल मिट्टी को बचाते हैं, हमारे जो जल स्रोत हैं, हमारे कुएं, तालाब, बावड़ी, भूमिगत जल, इनको पुनर्भरण करते हैं और हजारों जीवों को आवाज भी प्रदान करता है।
1: बिल्कुल।
0: तो आदिवासी समाज जंगल को माँ के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ जंगलों को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए मातानुवन, देवनुवन, इस तरह से जो है उनको नाम दिए जाते हैं और उतनी ही अपनी धार्मिक आस्था जिससे जुड़ी होती है, तो उन जंगलों का संरक्षण होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जंगल जैसे सामान्य रूप से हम मानते हैं वैसे नहीं है। जंगल हमें लकड़ी तो देते ही हैं, साथ में चारा देते हैं, फल देते हैं, जड़ी बूटी देते हैं, शहद देते हैं, लघु वनोपज देते हैं, हमारे पोषण का जो है वो माध्यम है। तो जंगल का उपयोग सीमित और जिम्मेदारी के साथ करने की जो परंपरा वागड़ में पाई जाती है, वो सीखने के लिए हमें अन्य समुदायों को भी जो है प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल।
0: वागड़ में, वागड़ के जंगलों में यदि हम बात करें श्रोता साथियों, तो यहाँ पे सागवान, महुआ, बांस, नीम, खैर, सालर, आम, बेल, अर्जुन, बबूल, बेहड़ा, खाकरा और कई दुर्लभ जड़ी बूटियां यहाँ पे पाई जाती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आप हमें ये बता रहे हैं कि वागड़ क्षेत्र के जो जंगल हैं वहाँ पर कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं और किस तरीके से वहाँ पर जैव विविधता का समृद्ध रूप हमें देखने को मिलता है। यही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जलवायु परिवर्तन और वागड़ की चुनौतियाँ क्या क्या है।
0: जी बिल्कुल। यदि हम बात करें कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण विविधता या जीव विविधता और हमारे वागड़ क्षेत्र में इसकी चुनौतियां, तो जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वागड़ क्षेत्र में भी अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे बारिश का समय बदल रहा है, बिना समय बारिश होना, ज्यादा बारिश होना या बहुत कम बारिश होना। यदि हम अभी गर्मियों की बात करें तो इस साल जो गर्मी पड़ी है वो एक तो बहुत ज्यादा है।
1: बिल्कुल।
0: और इस गर्मी में कहीं से भी राहत महसूस नहीं हो रही है। जैसे पहले हम नीम या आम के पेड़ के नीचे आराम से बैठ के अपने दोपहर का समय निकाल पाते थे, पर इस साल देखने में आया कि वहां भी जो है राहत महसूस नहीं हो रही है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये स्पष्ट संकेत है कि किस तरह से जो है हमारी वागड़ में जो है तापमान अलग तरीके से बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल सर।
0: हमारे जो जल स्रोत हैं वो तेजी से इस समय में सूखे हैं और पानी के लिए कहीं ना कहीं मेहनत ज्यादा हो रही है।
1: जी जी।
0: तो इसका प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे जो छोटे किसान हैं उन पे पड़ता है, क्योंकि अचानक पानी के कम होने से कई बार उनकी फसलें खराब हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: फसलें खराब होने से पशुधन के लिए चारा कम हो जाता है और कहीं ना कहीं ये आर्थिक रूप से जब उनकी स्थिति को डगमगाता है तो पलायन के रूप में जो है इसका प्रभाव देखने को मिलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: तो यदि चुनौतियों के समाधान में हम महिलाओं की भूमिका की बात करें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वागड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा यदि जैव विविधता संरक्षण की वास्तविक संरक्षक किसी को माना जाएगा तो वो महिलाएं हैं।
1: बिल्कुल।
0: वो घर के लिए पानी लाती है, वो पशुधन के लिए पानी लाती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, हर तरह का बीज वो घर में बचा के रखती है, जंगलों से घर के लिए उपयोगी सामान लाती हैं, परिवार के भरण पोषण का वो पूरा ध्यान रखती है,
1: जी जी,
0: स्थानीय पौधों, खाद्य पदार्थों, औषधीय जड़ी बूटियों की जानकारी भी महिलाओं को जो है बहुत अच्छे तरीके से होती है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो हम ये बोल सकते हैं श्रोताओं कि वो घर और खेत दोनों में जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो यदि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए और उनके ज्ञान को पूरा सम्मान दिया जाए तो संरक्षण के जो हमारे प्रयास हैं, पर्यावरण संरक्षण के हमारे जो प्रयास हैं, वो और ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में आपने हमें बहुत अच्छी बातों से अवगत करवाया है कि किस तरीके से पर्यावरण का हमारे जीवन में महत्व है और वागड़ क्षेत्र की पर्यावरण को लेकर क्या क्या जैव विविधताएं हैं और उनका क्या महत्व है। सर, बातें कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी हो गई है, अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, तो श्रोताओं, यदि हम संदेश की बात करें या हम ये बात करें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम अपने जीवन में उतार लें जिससे हमारी जैव विविधता के साथ पर्यावरण संरक्षण भी हम कर पाएं।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें ये समझना होगा कि प्रकृति और हमारे बीच का ये संबंध केवल उपयोग का नहीं बल्कि सह अस्तित्व का संबंध है। आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देना है तो हमें पर्यावरण संरक्षण को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। वागड़ की धरती, उसके जंगल, नदियां, हमारे बीज, हमारा समुदाय, ये सब आज हमको बुला रहे हैं कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाना मानवता का वास्तविक रास्ता है।
1: बिल्कुल। तो सर, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: वागड़ रेडियो और सभी सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धन, मगर ये पवन
3: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे और विषय विशेषज्ञ से जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश 11 से 1 बजे तक चलता है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वाकर रेडियो 90.8 FM पर। तो श्रोता साथियों, आप अपने फरमाइश गीतों को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए 9460051234। इस नंबर के जरिए आप अपने फरमाइश गीतों को भेजकर अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 बज चुकी है, कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है दो रास्ते, गीत की बोल है ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। इस गीत को आवाज दी है आनंद बख्शी साहब ने, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, गायक कलाकार है मोहम्मद रफीक साहब। सुना चाह रहे इस गीत को मुकाम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंडरपुर से जाकिर मुलानी, समय मुलानी, सुभान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, चाचा चाची और मुलानी परिवार के सारे सदस्य। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं दादरी गीत भिवानी से कृष्णा मेहरा, कमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। अनुरोध किया है इस गीत को उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, ये है लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, गीत की बोल है ये रेशमी जुल्फे।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मेली, गीत है हुस्न पहाड़ों का। सुनना चाह रहे इस गीत को मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। इसी गीत के साथ श्रोता साथियों जुड़ रहे हैं। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयवान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और सारा परिवार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं। उत्तम सिंह जंगल, मौरा जंगल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगल और नंदनी जंगल। धंधा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित जंगल, शकुनी जंगल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंगल और अंजलि जंगल। सुनना चाह रहे हैं इस गीत को। कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान, सारिका अली खान। फरमाइशों का सिलसिला चल रहा है श्रोता साथियों। इस फरमाइश के साथ जुड़ रहे हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। ये हैं गांव लाहौर डड्डा जिला बागपत से। करावल नगर दहली से हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं हुस्न पहाड़ों का।

श्रोता साथियों, बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। गीत के बोल थे हुस्न पहाड़ों का, आवाज दी थी इस गीत को लता मंगेशकर जी ने। यही अगली फरमाइश हमारे पास आई है, फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है, गीत के बोल है लड़की बड़ी अनजानी है। सुना जा रहे इस गीत को रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे और कृष्णा खोड़के। अनुरोध करता है दोस्तों इस गीत की ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चनाताई गुड़ाने, हिरावन शिंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गुड़ाने पसंद किया है इस गीत को। सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के, रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से हैं ये। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ श्रोता साथियों जुड़ रहे हैं। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और एमपी सतना मध्य प्रदेश से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। सालार पहलगाम कश्मीर से हैं पैजा मिर्जाउद्दीन। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। तो आइए श्रोता साथी सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

मंगेशकर जी ने सुना चाह रहे इस गीत को जिला नांदेड़ की तला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल अनुरोध करता है। दोस्तों इस गीत के बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक मैंक मुनत, चेतन नाटा, दिलीप से पवार, दीक्षा कुश मुनत और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। गाजियाबाद से है शिशपाल अकेला, बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से बीबी शालिया डावर, बीबी हलीमा डावर, बीबी जिक्रा डावर, बीबी आयशा खत्री, घूंघट रेडियो श्रोता संघ जिला धार धर्मपुरी से है मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर जी खत्री। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश्वरी, ट्विंकल, टिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। ग्राम पजूनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा।

साथियों, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। गीत की बोल है मस्त बहारों का मैं आशिक, फिल्म का नाम है फर्ज। सुना जा रहे इस गीत को छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार नसीम मोहम्मद, सलमा बैगम, रेहान मोहम्मद, फैजान मोहम्मद। अनुरोध करता है श्रोता साथियों इस गीत की। बीड़शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मैत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय टूल, पीपी गुलते और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। श्रोता साथियों, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकन वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, मुरली खूबचंद वर्मा। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवाजी, श्रीमती करुणा श्रीवाजी, आयुष श्रीवाजी, विवेक श्रीवाजी, बेबी आयुषी। ग्राम कोरबी बेलतरा छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित, सोमू, मानस राज, अजित कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से हैं। ये अनुरोध किया है इस गीत को मलियाना सरतना मेरठ से अनिल जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, जय राज फ्लोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, जैस्मिन और प्रयागराज जी भट्ट। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल है मस्त बहारों का मैं आशिक।

कह दो हर नजर से सबको ये बता दो कह दो हर नजर से कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से।

सख्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से

0: अगर मैं आपको एक
1: श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है बूंद जो बन गई मोती, गीत के बोल ही ये कौन चित्रकार है। सुनना चाह रहे हैं इस गीत को भोपाल के राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा, पूजा परिहार अनुरोध करता है इस गीत के। श्री सुधाकर राजे जादव, प्रशांत राजे जादव, कुमार संचित वायल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख, कल्पना देशमुख, यह ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा अनुरोध करता है दोस्तों इस गीत के। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। फरमाइशों का सिलसिला श्रोता साथियों हमारा चल ही रहा है। इस फरमाइश के साथ जुड़ रहे हैं मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी। पसंद किया है इस गीत को ग्राम महेशवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं। जोन रोजी पर लवीलीज जनकपुरी सरहानपुर से हैं ये। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं ये कौन चित्रकार है।

साथियों, अगली फरमाइश हमारे पास है। ये फिल्म का नाम है बॉर्डर 2। गीत के बोल है मिट्टी के बेटे। सुनना चाह रहे इस गीत को तुलसी मस्किन, बीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रिशित खुराना, किशोर त्रिधान खुराना। अनुरोध करता है श्रोता साथियों इस गीत के नासिर शेख, नाजिया नासिर, शाजिद शाहिद, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मुजावर, मिखाइल जैनब मुजावर और भी दोस्त हैं श्रोता साथियों जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से हैं दीपक शाक्य, ज्योति शाक्य, सक्षम शाक्य। तो आइए श्रोता साथी सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल है मिट्टी के बेटे।

मेरी गुजारिश है अगर आज हम शहीदों के लिए हम आत्मा हो तो मुझे लगता है कि हमारी आज की

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं, गीत के बोल हैं तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले। सुना जा रहा है इस गीत को खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाटू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाभी का सिक्का। अनुरोध किया है इस गीत का। ग्राम लसुड़िया पता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका रमेश चंद्र डांगी। सुना जा रहे हैं इस गीत को नेहरू चौक पैटर्न से डॉक्टर सुरेश जादव, अनिता जादव, आरती पूजा, प्रसाद जादव, सोनल जादव, बीबी सिया जादव, जालना शहर से सोमनाथ जादव, गीता जादव, ओम जादव, सुभाष जादव, चंदन जादव, एकनाथ जादव, संगीता जादव इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं तुम्हें अपना बनाना, तुम्हें अपना साथी बनाना बनाने से पहले, और फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं। आवाज दी इस गीत को लता मंगेशकर जी ने और शब्बीर साहब ने। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

نہ ساتھی بنانے

दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट के साथ में, अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से। फिल्म का नाम है सच्चा झूठा, गीत के बोल हैं, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने और लता जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बुलेंदखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियाल और दिव्यांशी जी विश्वकर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे डाबकी रोड अकोला से शशिला दी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। इस गीत के अनुरोध करता है मदनपुर से श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू, राहुल जी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ से बबलू शाहू, जामुन देवी शाहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या जी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं हनुमानगढ़ से भाई प्रेम सिंह वड़वाल, सुखवीर काजल, लखवीर जी, रानो कृष्णा, श्रीमती सिंधु जी, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला जी, शिनाली और अनमोल जी और चिंकू मिंकू। आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, यूं ही तुम मुझसे बात करती रहो। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने और लता जी ने। आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकर रेडियो 90.8 FM पर, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी हमने लता जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अकोट से। फिल्म का नाम है मोहब्बतें, गीत के बोल हैं पैरों में बंधन हैं। इस गीत की फरमाइश करता है विनायक भेंडे, श्रीमती मंगला जी, विजय शुभम, पवन जरिए और सजीव जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, कोल सिटी बरका काना से अफताब ताज, साहिन सुल्तान, सोनू तस्नीम, कमल कुमार जी और अफताब मलिक जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं जाखोत राजस्थान से, शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रजेश संगई, प्रतीत जी संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत की अनुरोध करता है मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाच पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं पैरों में बंधन हैं। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है उपकार। गीत के बोल हैं दीवानों से मत पूछो। इस गीत को आवाज दी है मुकेश जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु बब्बन मीनू काना हरिप्रिया जी ठाकुर और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। बिहार कुलनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतनी मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना और हिधांजी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत जी और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मलियाना सरधाना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। इस गीत के अनुरोध करता है पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं दीवानों से मत पूछो। इस गीत को आवाज दी है किशोर जी ने और उपकार फिल्म का ये गीत है। आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल, गीत के बोल हैं परदेसी ये सच है पिया। इस गीत की फरमाइश करता है गुणवर श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आरुषि श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आरुषि श्रीवास।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कल्याण मुंबई से। फिल्म का नाम है सिलसिला, गीत के बोल हैं देखा एक ख्वाब।

अब तो ये सिलसिले हुए। इस गीत को पसंद करने वाले हैं किशोर हीरेवाले, सुजाता हिवराले, प्रतीक जी और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं गंजडुड़वारा से, मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्तान अंसारी, मोहम्मद उस्मान हाशमी, शमशुल कमर राही जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांश जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है पतरोड से विजय अंबाडकर, सुनीता अंबाडकर, अक्षय अंबाडकर, राधिका अंबाडकर, ऋषिकेश जी अंबाडकर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नई बस्ती गंजुडवारा से यासिन हाशमी, नवजा बेगम हाशमी, तोसीफ जी, तोइनूर जी, कलीम अंसारी जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से, नीतीश कुमार देवगान, दुर्गा प्रसाद पलारा, तनुजा देवगान और ईशान जी। इस गीत की अनुरोध करता है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से साहिद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नोरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों अभी हमने लता जी और किशोर जी की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मेली। गीत के बोल हैं, हुस्नों का पहाड़ा पहाड़ों ओ साहिबा। इस गीत की फरमाइश करता है विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव सिंधी। खंडाला से जुड़ना चाह रहे हैं आकाश सरोदी, प्रिया जी सरोदी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं हरियाणा से, रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मुन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। इसी बीच जुड़ना चाह रही हैं गंजडुडवारा उत्तर प्रदेश से, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी और राधा नामदेव जी। मुरादाबाद से जुड़ना चाह रही हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजदार, नरगिस जी खातून। दुलापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है मॉडल टूल कर्नल से सुधीर न्यूटन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापत, इश्प्रीत शर्मा, हर्षीपाल शर्मा।

माँ सोनिया। हाँ अलका जी, और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। गंजुडवारा गणेशपुर सी फिरासत हुसैन अलकमर जहाँ सिफा सिमरन मोहम्मद अली फेक जी, और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। श्रीरामपुर से डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका सोनू कुम्भार, अर्चना कुम्भार, पुनावली से जुड़ना चाह रही हैं अजीत सोनू ने, करिश्मा सोनू ने, अविका सोनू ने, विशाखा सोनवनी जी, और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजु योगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी, और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आवारपुर से शेख हबीब छोटू भाई शेख, साजन शेख, फैजाज शेख, फारूक शेख, वसीम शेख, अफसाना शेख, अश्मीरा जी, अरफान शेख, जनित शेख और अरफान शेख, अब्दुल्लोही वाला और शाहिदा जी शेख। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोले हुस्नों का पहाड़। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कुंभार गली श्रीरामपुर से। फिल्म का नाम है मृत्युदंड। गीत के बोल हैं कह दो एक बार सजना। इस गीत की फरमाइश करता है अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका दली, सानिका दली, पुनावली पुणे से जुड़ना चाह रहे हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा जी सोनवने। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं मंडियाहू जौनपुर से। इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवीद इरशाद, अजरात अबू समझी। बनारस से जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरीन अंसारी, आफिया परवीन जी। अस्तुपुरा जिला मऊ से जुड़ना चाह रहे हैं मजीर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक जी अंसारी। गाजीपुर से जुड़ रहे हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला जी आज़ाद। छत्रपति संभाजीनगर से जुड़ रहे हैं राजेश शामले पाटिल, राजदीप राजेश, शीतल राजेश, राशिजी राजेश। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रही है बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबांजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांदी, दीप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका वाणीजी थांदी। एकता कॉलोनी रोहतक से जुड़ना चाह रहे हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोर्ड जी। दिल्ली से जुड़ रहे हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतन मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं राहुल खुराना, रचिता जी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुत्रमेश शाहू। बिहार से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अंसारी, दानिश जी अंसारी। बक्सर से जुड़ रहे हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। बक्सर से और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं राज एडी अंसारी, आसमा खातून जी अंसारी। इस गीत के अनुरोध करता है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं कह दो एक बार सजना। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पूना जंक्शन मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है बेताब, गीत के बोल हैं जब हम जवां होंगे। इस गीत को आवाज दी है लता जी और शब्बीर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत।

और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुषि, शोरिया, दिनेश जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदनी नामदेव, नेहा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास, रंजन शाहू जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटेल नगर मालोट से रमेश कुमार झंझोरिया, गीता रानी झंझोरिया, गंदीप झंझोरिया, गुरजू झंझोरिया और गुड्डू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं खड़वा मध्य प्रदेश से बेबी सालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिखरा डावर, बेबी आयशा खत्री। धर्मपुरी से जुड़ना चाह रही है मुशा जी खत्री, ईशा जी खत्री, जाखिर जी खत्री। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही जब हम जवां होंगे, बेताब मूवी का सॉन्ग है। इस गीत को आवाज दी है लता जी और शबीर कुमार जी ने। आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाक रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपने साथी जागृति भट्ट। साथियों, अब वक्त है शाम के खास कार्यक्रमों का जो आपके हर पल को बनाएगा खास, तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज के शाम के कार्यक्रम की रूपरेखा। साथियों, शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति शांति और सुकून से भरे सुरों के साथ दिन भर की थकान को अलविदा कहने का समय। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर युवाओं की आवाज, जहां सपने बोलते हैं, विचार उड़ान भरते हैं और युवा अपनी बात खुलकर रखते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं और कशिश पाराशर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है श्रोता साथियों शाम 6 बजे कार्यक्रम सच्चा बचपन। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे बच्चों की मासूमियत, मुस्कान और बचपन की यादों से भरा प्यारा सा सफर। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है खेतीबाड़ी, इसे आप सुन पाएंगे 6:30 पर। ये कार्यक्रम किसानों के काम की बात, जमीन से जुड़ी सच्ची जानकारी और अनुभव है। इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। श्रोता साथियों, जैसे कि कार्यक्रम की रूपरेखा चल रही है तो हम अगला कार्यक्रम आपको बताते हैं। अगला कार्यक्रम शुरू होगा 7 बजे और इस कार्यक्रम का नाम है सच्चा स्वराज। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे समाज, सोच और सच्चाई से जुड़ी आवाज जो हमें जागरूक बनाती है। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम होगा हमारा स्वास्थ्य, जो कि सेहत और सम्मान की बातों के साथ होगा। इसे आप सुन पाएंगे 7:30 पर। इसे लेकर आएंगी आरजे कशिश पाराशर और हमारे रेडियो साथी मनीषा पटेल। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है समस्या समाधान, इसे आप सुन पाएंगे 8 बजे। तो श्रोताओं, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा में आपको बता रही हूँ तो अंत में आप सुनेंगे 9 बजे शामी कसले। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनेंगे अल्फाज जो छू जाए, एहसास जो ठहर जाए, सुकून भरी रात की शुरुआत। तो श्रोताओं, शाम की घड़ियां यूं ही नहीं गुजरती, ये वो पल है जहाँ भक्ति भी है, युवा सोच भी है, बचपन की हंसी भी है, किसान की मेहनत भी है, सच की आवाज भी है, सेहत और सम्मान की बात भी है, संगीत का जादू भी है और गजलों का सुकून भी है। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागर रेडियो। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: निर्णय के क्षण में हम सदा ही किसी अन्य के सुझाव, सूचना, मंत्रणा या परामर्श को आधार बनाते हैं और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज लिए गए निर्णय के ऊपर होता है। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य के परामर्श, किसी अन्य के सुझाव का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य की बुद्धि का परिणाम? क्या हमने कभी विचार किया है? सबका अनुभव है कि भिन्न भिन्न लोग एक ही स्थिति में भिन्न भिन्न परामर्श देते हैं। मंदिर में खड़ा भक्त कहता है कि दान करना चाहिए और चोर कहता है यदि अवसर मिले तो इस मूर्ति के श्रृंगार चुरा। धर्म से भरा हृदय धर्ममय सुझाव देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्म में सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, किंतु ऐसे परामर्श का स्वीकार करना तभी संभव होता है जब हृदय में धर्म, अर्थात किसी का सुझाव अथवा परामर्श स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना क्या आवश्यक नहीं? स्वयं विचार कीजिए।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कि वो पर्यावरण के संरक्षण प्रकृति का सम्मान करेंगे तो पृथ्वी आने वाले वर्ष। इसी कारण से दोस्तों भारतीय परंपराओं में पर्यावरण संरक्षण के ढेर सारे संदेश हमें देखने को मिलते हैं।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में युवा साथियों आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है,
1: बिल्कुल
0: यह हम सभी का कर्तव्य है। आज हम जो कदम उठाएंगे वही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। यदि जागृति जी हम पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे, स्वच्छता अपनाएंगे और हमारी प्रकृति का सम्मान करेंगे तो पृथ्वी आने वाले वर्षों तक जीवन दायिनी बनी रहेगी।
1: बिल्कुल,
0: हमें याद रखना चाहिए कि प्रकृति हमें जीवन जरूर देती है, इसलिए उसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। साथियों, एक पेड़ 100 पुत्रों के समान होता है क्योंकि यह केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरी मानवता को जीवन देता है।
2: जी हाँ, जी हाँ कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रकृति का अमूल्य उपहार है और मानव जीवन का आधार भी। यह हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान करता है। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो मानव जीवन सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल,
2: आज प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों में अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण संकट जैसी समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाए।
3: तो हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि पर्यावरण केवल प्रकृति का विषय नहीं है बल्कि मानव जीवन, स्वास्थ्य, विकास और भविष्य का आधार है। जिस प्रकार हम अपने परिवार और समाज की चिंता करते हैं मनीषा और कशिश, उसी प्रकार पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। प्रकृति हमें बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ दे देती है श्रोता साथियों, इसलिए उसका संरक्षण करना हमारा नैतिक दायित्व है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करें। यदि हम अभी से पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित पृथ्वी दे पाएंगे। तो श्रोता साथियों, हम प्रकृति के सच्चे मित्र बने, पेड़ लगाएं, जल बचाएं, प्रदूषण कम करें और पर्यावरण संरक्षण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है।
1: बिल्कुल,
0: और जैसा कि हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर बातचीत कर रहे थे, उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा साथियों को ये बातें जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ,
0: तो जैसा कि अब समय हो चला है और बातें भी पूरी हो चुकी है तो कार्यक्रम से विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत सुनवाए यहाँ पर।
1: जी हाँ,
2: बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के साथ हम विदा लेते हैं। अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम पृथ्वी को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाते बल्कि अपने बच्चों से उधार लेते हैं। यदि आज हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो कल प्रकृति हमारी रक्षा करेगी।
1: बिल्कुल,
0: एक पौधा, एक बूंद पानी की बचत, एक जागरूक कदम भी बदलाव की शुरुआत बन सकता है कशिश और मनीषा। इसीलिए आज ही ये प्रण करें श्रोता साथियों कि हम प्रकृति के प्रहरी बनेंगे, अपनी धरती को हरा भरा और स्वच्छ जीवनदायी बनाए रखेंगे।
1: जी हाँ,
0: इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपनी राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को,
2: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को,
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
2: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
2: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात में शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आस है सेहत नु असली राज।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार साथियों, कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वीकार कीजिएगा साथियों मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर हाजिर होते हैं तो आपसे बात करते हैं एक नए विषय को लेकर। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय हमारे बीच रहेगा साथियों। आज हम बात कर रहे हैं मजाक की चोट को लेकर। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं कि मजाक तो हम सभी करते हैं और बचपन में तो हमने ढेर सारे मजाक किए हैं, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मजाक भारी बढ़ जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो साथियों पहले मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय में आपको बता चुकी हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं मजाक की चोट को लेकर। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में एक बहुत ही प्यारा सा रेडियो नाटक है, जिसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि मजाक की चोट आखिर है क्या। क्योंकि दोस्तों, हम देखते हैं कि बचपन में मजाक हम सब ने किए हैं, और बचपन जो है वो जीवन का सबसे सुंदर समय होता है। लेकिन कई बार श्रोता साथियों, यही बचपन बच्चों के लिए डर, शर्म और अकेलेपन का कारण भी बन जाता है। हम देखते हैं कि स्कूल में, गली मोहल्लों में या दोस्तों के बीच कई बच्चे ऐसे हैं जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। किसी के कपड़े को लेकर, किसी के रंग को लेकर, बोलने के तरीके को लेकर, गरीबी या कमजोरी पर बच्चे हंसते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है साथियों कि ये सिर्फ उनके लिए हंसी मजाक है। लेकिन कभी कभी साथियों, यही मजाक किसी बच्चे का आत्मविश्वास भी तोड़ देता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम दो सहेलियों की कहानी को जानने वाले हैं, रीमा और कविता। रीमा बड़ी चंचल सी और मजाक करने वाली लड़की है, वहीं जो कविता है वो थोड़ी सी संवेदनशील और समझदार लड़की है। तो आइए साथियों, सुनते हैं कि आखिर मजाक की चोट है क्या।
1: अरे कविता, आज देखा तुमने उस लड़की को?
2: कैसे पुराने कपड़े पहनकर आई थी, और उसका बेग
1: कितना फटा हुआ था।
3: रीमा, तुम इस तरह क्यों हंस रही हो?
1: अरे यार, मजाक कर रही हूँ, इतना सीरियस मत हुआ करो।
3: लेकिन अगर उसे बुरा लग गया तो?
1: अरे छोड़ो भी, आजकल इतनी छोटे छोटे बातों का कौन बुरा मानता है।
3: रीमा, कुछ बातें छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन दिल पर बड़ी चोट कर जाती हैं।
1: अरे तुम भी ना हर बात में ज्ञान देने लगती हो। हल्का सा म्यूजिक, फिर स्कूल की घंटी। कविता।
3: अरे रीमा, क्या हुआ, आज इतनी चुप क्यों हो?
1: आज क्लास की लड़कियां मेरा मजाक उड़ा रही थी।
3: क्यों?
1: कह रही थी कि मैं सही अंग्रेजी नहीं बोल पाती। सब हंस रहे थे, मुझे बहुत शर्म आई।
3: और कैसा लगा तुम्हें?
1: बहुत बुरा, ऐसा लगा जैसे मैं सबसे अलग हूँ। मन किया कि क्लास से बाहर चली जाऊँ।
3: बस रीमा, यही एहसास उस नई लड़की को भी हुआ होगा जब तुम उसके कपड़ों पर हंस रही थी।
1: मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं, मुझे लगा था कि मैं बस मजाक कर रही हूँ।
3: रीमा, मजाक तब तक ठीक है जब तक किसी की मुस्कान बनी रहे, लेकिन अगर किसी की आंखें नम हो जाए तो वो मजाक नहीं, तकलीफ बन जाता है।
1: कविता, क्या सच में लोग इतनी छोटी बातों से टूट जाते हैं?
3: हाँ रीमा, हर इंसान बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही संवेदनशील भी हो सकता है। कुछ बच्चे घर की परेशानी झेल रहे होते हैं, कुछ गरीबी से लड़ रहे होते हैं, कुछ पढ़ाई में कमजोर होते हैं, कुछ अपने रंग या शरीर को लेकर पहले से ही दुखी होते हैं, और जब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो किसी लायक नहीं है।
1: मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरे शब्द किसी को इतना दुख दे सकते हैं।
3: रीमा, शब्दों में बहुत ताकत होती है, वे किसी को ऊपर उठा सकते हैं और किसी को अंदर से तोड़ भी सकते हैं।
1: कविता, बचपन में मेरा भी मजाक उड़ाया जाता था।
3: सच में?
1: हाँ, क्योंकि मैं बहुत दुबली थी, सब मुझे सिकिया कहकर चिढ़ाते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं रोती भी थी।
3: फिर भी तुम दूसरों के साथ वही रहने लगी?
1: शायद क्योंकि मैंने कभी अपने दर्द को समझकर दूसरों के दर्द से जोड़कर नहीं देखा था।
3: रीमा, जो दर्द हम झेल चुके हैं उसी दर्द से दूसरों को बचाना ही इंसानियत है।
1: सही कह रही हो तुम कविता, अब से मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, और अगर मेरे सामने कोई ऐसा करेगा भी तो भी उसे रोकूंगी।
3: हाँ रीमा, यही सबसे बड़ी समझदारी है।
1: अब मुझे समझ आया, किसी को हंसाना अच्छी बात है, लेकिन किसी पर हंसना गलत है।
3: बिल्कुल रीमा, हर बच्चे को प्यार, सम्मान और अपनापन चाहिए होता है, मजाक नहीं।
1: सही कह रही हो तुम।
0: साथियों, ये थी रीमा और कविता की कहानी। हमने जैसा कि देखा श्रोता साथियों कि रीमा जो है वो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाती रहती है, लेकिन कविता उसे समझाती है कि इस तरीके से दूसरों के रंग को लेकर या किसी भी चीज को लेकर मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती है। दोस्तों, कई बार हम ये सोचते हैं कि बच्चे हैं, थोड़ा मजाक तो करेंगे ही, लेकिन ऐसे में हमें ये समझना होगा कि बचपन में मिले शब्द जीवन भर याद रहते हैं। इससे किसी भी बच्चे का आत्मविश्वास तोड़ना काफी आसान है, लेकिन उसे फिर से खड़ा करना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, ऐसे में हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि किसी की कमजोरी पर हंसना नहीं, बल्कि उसका साथ देना सबसे बड़ी इंसानियत होती है। दूसरों को नीचा दिखाकर साथियों हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि उन्हें ऊपर उठाकर इंसान जो है वो बड़ा बन सकता है। जैसा कि आज की इस कहानी में हमने देखा कि कभी कभी हंसी के नाम पर कही गई बातें किसी के मन पर कितना गहरा असर छोड़ जाती है। बचपन श्रोता साथियों काफी नाजुक समय होता है। इस उम्र में बच्चे अपने आसपास के लोगों की बातों को बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं और दिल से भी लगा लेते हैं। अगर ऐसे में उन्हें बार बार नीचा दिखाया जाए, उनका मजाक बनाया जाए और उनकी कमियों को सबके सामने उछाला जाए तो वह धीरे धीरे खुद को कमजोर समझने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि साथियों अच्छे व्यवहार और संवेदनशीलता की भी शिक्षा दें। उन्हें हम ये समझाएं कि हर इंसान अलग होता है, किसी का रंग अलग हो सकता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर हो सकता है, लेकिन श्रोता साथियों इसका मतलब ये नहीं है कि वह सम्मान के लायक नहीं है। याद रखिए दोस्तों कि एक अच्छा शब्द किसी टूटे हुए मन को फिर से हिम्मत दे सकता है और एक छोटी सी तारीफ किसी बच्चे के अंदर नया आत्मविश्वास जगा सकती है। तो ऐसे में आज से ही हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी के दिल को चोट पहुंचाने वाली हंसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम अपने बच्चों को दया, सम्मान और अपनापन सिखाएंगे, क्योंकि अच्छे समाज की शुरुआत अच्छे व्यवहार से ही होती है दोस्तों। तो इसी उम्मीद के साथ अब जैसा कि बातें कार्यक्रम में मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी है और समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में।

दोस्तों इस गीत के साथ ही आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से मैं विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हहमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सच्चा बचपन में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों। साथी दोस्तों आप सभी को छोड़े चलती हूँ एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: हर बच्चे का पूरा हक। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
4: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
4: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
4: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: ग्राम सभा में बोले बोले हैं तो फैसला मजबूत थे है। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल तक की जरूर बोले में रिश्तों है। जे जंगल में हमसे हैं ये उन्होंने रक्षा करे हैं। तो आओ बोले ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा, ने जंगल में भविष्य सुरक्षित करा। बोले ने आवाज विकास में असली पहचान है।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। Thank you.

0: कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवावारा मर हित्ता किसान भाई बुन ने आपनी बुन मनीषा
1: ने आपनी बुन अंजली नु
2: राम राम।
0: होवे भाइयों बुनो आप सब हमली रिया हो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में।
1: होवे भाई बुनो लेने हासिल थे गये हूँ कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने एक नया विषय ने हाथ दे मनीषा बुन आज कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अपने भाई बुनो तक की बातचीत नो विषय है कि पर्यावरण ने खेती नो संबंध है ने हरते अपने भाई बुन जे ही ई पर्यावरण संरक्षण में अपनो योगदान आली सके।
0: હવે અંજલી બોન તો આના વિશે માટે આપણે ભાઈ બોન કહેતી ઘણા અક્કાની વાતે રીંગા અબર હમણા આગીત ને મોરે કર આપણી વાતી
1: હવે તો ભાઈન બોનો આપ હમર તરેસુ આપણો રેડિયો આપણી વાતે વાગર રેડિયો 90.8 FM માટે।

0: આપણી બોન ગીત્યાંશુ પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફેરી આપણી ભાઈ બોનોનું સ્વાગત કરું. આપણે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે અંજલિ બોન આપે ગીત થકી પહેલે વિશે બતાડ્યું હતું કે આપણે ખેતીનું અને પર્યાવરણનું હું સંબંધી ને આપણે પર્યાવરણ સંરક્ષણ હે વિનમાં આપણે ભાઈ બોન આપણું યોગદાન હેતી આલી શકીએ.
1: હવે તો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે મનીષા બોન આસે આપણે કાર્યક્રમ મેં જોડી રહી માંગીલાલજી. તો સૌથી કે પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત ને મોરે કર આપણી વાતે.
0: હવે અંજલિ બોન
1: સર નમસ્કાર.
2: નમસ્કાર જી.
1: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
2: જી ધન્યવાદ.
1: સર જૈસા કી આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ ખેતીવાડી ઓર પર્યાવરણ કે સંબંધ કો લેકર.
2: જી
1: હમ દેખતે હૈ કી આજ 5 જૂન કા દિન હૈ ઓર આજ કે દિન વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ મનાયા જાતા હૈ. આજ કાર્યક્રમ મેં હમ યહી જાનેંગે કી કિસ તરીકે સે પર્યાવરણ કા સંરક્ષણ હમારે લિયે મહત્વપૂર્ણ હૈ और खेती के माध्यम से ये कैसे संभव हो सकता है.
2: जी तो बहुत अच्छा विषय है और आप देख रहे होंगे कि पर्यावरण है वो उसका जो संबंध है खेतीबाड़ी से वो ऐसा ही है जैसा कि जीवन के लिए साहस की जरूरत होती है.
1: बिल्कुल.
2: तो उसी तरह जल जंगल जमीन और हवा और जैव विविधता की हम बात करते हैं तो ये खेती की मूल आधारशिला है.
1: बिल्कुल.
2: यदि पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो आपकी खेती समृद्ध होगी. अगर खेती पर्यावरण के अनुकूल होगी तो पर्यावरण का जो संतुलन है वो हमेशा बना रहेगा.
1: बिल्कुल.
2: अगर आज की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बदलते मौसम, घटते जल स्रोत, मिट्टी की उर्वरता में कमी, जैव विविधता को नुकसान, तो ये जो है मानव जीवन के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है.
1: बिल्कुल.
2: ऐसे समय में हम विश्व पर्यावरण दिवस पे हम सोचने और समझने पर मजबूर करता है कि हम अपनी खेती और जीवन शैली को प्रकृति के साथ कैसे जोड़े.
1: बिल्कुल.
2: तो हम बात करते हैं जैसे खेती की, तो सदियों से है जो हमारे जो समुदाय है इसमें प्रकृति का संरक्षण करता आया है, उसके साथ मिलकर काम किया है, खेती की है. बीजों की बात करते हैं तो बीज संरक्षण है, हम हांगणी खेती की बात करते हैं, वृक्षों का संरक्षण है, जैविक खाद का उपयोग और जल संरक्षण जैसी परंपराएं थी वो हम कई सालों पहले हम करते आ रहे हैं.
1: बिल्कुल.
2: लेकिन धीरे धीरे आज की जो युवा पीढ़ी और जो बदलते जो पर्यावरणीय जो संतुलन है उसके कारण ये चीजें गंभीरता लाकर खड़ी कर दी इन्होंने.
1: बिल्कुल.
2: तो इसमें क्या है कि अभी वर्तमान समय में इनको पुनर्जीवित करने की जरूरत है क्योंकि समृद्ध खेती करनी होगी तो पर्यावरण को भी समृद्ध रखना पड़ेगा.
1: बिल्कुल.
2: तो इसी तरह अगर खेती और पर्यावरण की हम बात करते हैं तो इन दोनों का गहरा संबंध होता है. जैसे पूरी तरह खेती जो है वो पर्यावरण पर निर्भर करती है, जैसे कि अच्छी मिट्टी, पर्याप्त वर्षा, उपयुक्त जल, तो तापमान है उसको नियंत्रित करते हैं लोग.
1: बिल्कुल.
2: तो इसमें क्या है कि हमें आवश्यक है कि अगर आपको सही और सफल खेती करनी है तो हमें पर्यावरण का ध्यान रखना पड़ेगा.
1: बिल्कुल.
2: आज समय में जंगल कट रहे हैं, आप देख रहे हैं जंगल कट रहे हैं, पेड़ पौधे बहुत कम होते जा रहे हैं, तापमान बहुत बढ़ रहा है, खेती बाड़ी जो है वो पर्यावरण के कारण वो काफी असंतुलित हो गई है, आपकी पैदावार है वो बहुत कम होने लगी है. दूसरा कारण इसका ये है कि जैसे पर्यावरण की हम बात करते हैं तो मिट्टी और पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण संबंध है.
1: बिल्कुल.
2: और मिट्टी ही जो है आपकी खेती का पूरा जो उत्पादन है वो डिसाइड करती है.
1: बिल्कुल.
2: तो हम देखते हैं कि अगर आपकी मिट्टी सही नहीं होगी तो आपका पैदावार भी कम होगा, उसमें से जो पैदा होगा अनाज वो भी इतना पौष्टिक नहीं होगा. तो जब मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी में क्या है कि पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत सारे करोड़ों जीव उस मिट्टी में होते हैं.
1: बिल्कुल.
2: जिसमें केचुए होते हैं, बहुत प्रकार के जीवाणु विषाणु होते हैं, वो मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं.
1: बिल्कुल.
2: लेकिन धीरे धीरे क्या है कि हमारी जो समुदाय है इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे रसायनों का उपयोग बढ़ा दिया. आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति डीएपी और यूरिया के पीछे भाग रहा है. तो अगर ये ऐसा है तो हमें सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं.
1: बिल्कुल.
2: हम उस मिट्टी का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं या सही कर रहे हैं. तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जो है रासायनिक अगर ज्यादा उपयोग कर रहे हैं तो ये समझिए आप मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है. और स्वास्थ्य खराब होगा तो आपका जो भी उत्पादन है, जो भी आपकी क्रॉप है,
1: बिल्कुल,
2: वो नहीं होगी. कई फसलें ऐसी है जो उस मिट्टी में उगना भी बंद कर देती है और कर दी है अभी वर्तमान में.
1: जी जी.
2: तो यही ध्यान रखने की जरूरत है कि हम जो है हमें पर्यावरण को संतुलन बनाकर हमको खेतीबाड़ी करनी चाहिए, जिसमें हमें जैसे हम बात करते हैं हांगणी खेती की.
1: जी जी.
2: तो हांगणी खेती पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखोगे उसमें आप 8-10 प्रकार की अगर सब्जियां या फल या फिर आप अनाज उगाते हैं तो वो मिक्स में आंगणी जो हम बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं वो आपको जो आपके मिट्टी है उसको संरक्षण और उसको उर्वरक बनाती है। जैसे आप बात करते हैं कि आप मक्की के साथ में आपने अगर चौले लगा दिए या और जैसे उड़द लगा दिए, मूंग है, तो उसकी जो पत्तियां हैं वो हरा खाद का काम करती है और हरा खाद हमेशा पर्यावरण को सुरक्षित बनाता है, स्वस्थ बनाता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप हमें बहुत अच्छे तरीके से ये बता रहे हैं कि खेती और पर्यावरण का क्या संबंध है, हम आपके माध्यम से जान पा रहे हैं कि मिट्टी और खेती को किस तरीके से पर्यावरण की आधारशिला कहा जा सकता है। यही अब बात आती है जल की। तो जल किस तरीके से हमारे पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
2: देखिए, जल जो है, जल के बिना वैसे तो कुछ भी संभव नहीं है। हमको पता है कि जीवन भी संभव नहीं है।
1: जी जी।
2: तो आज की हम बात करते हैं तो जल का जो लगातार जो जल स्तर है वो कम होता जा रहा है।
1: जी जी।
2: और इसके कारण अनेक प्रकार के संकट पैदा हो रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं, हमारे जो पूर्वज थे उन तालाब, कुएं, बावड़ियां, नाडी, खेत, खेत तालाब, तो वो संरक्षण करते थे उस जल का। तो उस समय क्या होता था कि उसका जो स्तर है वो बना रहता था और इस तरह का संकट नहीं आता था। लेकिन अब भी क्या है, वर्तमान में आप देखोगे तो इसको रोकने या इसको बचाने के प्रयास बहुत कम हो गए हैं। हमारे समुदाय की हम बात करते हैं तो हमारे समुदाय में आज भी वो परंपराएं हैं। कहीं परिवार, कहीं गांव है जो हमारे लिए एक उदाहरण है। जैसे हम बात करते हैं हलमा के माध्यम से जल संरक्षण, तो अभी ढेर सारी जो गाँव में हमारे जो हलमा किया, उससे तालाबों को साफ किया, उसके गाद को निकाला, तो ये जो चीजें हैं ये हमारे पूर्वज और ज्यादा करते थे।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन धीरे धीरे कम हो गई। और ये कम होने के कारण क्या होगा, जब जल का आप संरक्षण नहीं करोगे तो जो जल स्तर है वो आपका नीचे जाएगा और नीचे जाएगा तो धीरे धीरे आपकी जो जमीन है उसको पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल।
2: और आपकी खेती बाड़ी धीरे धीरे बंद हो जाएगी।
1: जी हाँ।
2: तो इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और खेती को सुरक्षित रखने के लिए जल जो है संरक्षण वो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
2: इसी तरह हम बात करते हैं, जैसे बीजों की हम बात करते हैं, तो बीज भी जो पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण साथी है, जो हमेशा, क्योंकि जो हमारा देसी बीज होता है वो हमारे जो पर्यावरण है उसके अनुकूल होते हैं वो, और वो पैदावार बहुत ज्यादा देते हैं।
1: जी जी।
2: लेकिन अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि किसान भाई हमारे बाजार की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो बाजार से हाईब्रिड बीज खरीदते हैं, लेकिन वो नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा उठाते हैं। उसका कारण ये है कि अगर बीज पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा तो अगर आपके क्षेत्र में ज्यादा बारिश हो गई तो आपकी फसल नष्ट हो जाएगी।
1: बिल्कुल।
2: तो इसी तरह हमें देखना है कि हमें हमेशा हमारे जो खुद के बीज है उनको सहज कर रखें, उनको हम उगाएं। और आपको ये बताऊं मैं कि हाइब्रिड बीज आपको एक बार पैदावार देगा, अगर दूसरी बार उसको डालते हो आप तो नहीं देगा उतनी।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन देसी बीज जितना पुराना होता जाएगा उसकी पैदावार है उतनी बढ़ती जाएगी।
1: बिल्कुल।
2: और पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल होते हैं वो, क्योंकि जैसा आपका वहाँ का क्लाइमेट होगा उसी तरह वो उगेंगे, उसी तरह पैदा होगी, उसी तरह आपका उत्पादन होगा, तो वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अभी वर्तमान में क्या है कि हम पर्यावरण की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने संकट खड़ा कर रही है।
1: जी जी।
2: तो मैं किसान जो साथी है हमारे, मैं यही कहूंगा कि क्यों हम इस परंपराओं को भूल रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते आए हैं।
1: बिल्कुल।
2: हमें पुनः उनको अपनाने की आवश्यकता है अगर हमारी खेती को बचाना है। तो जैसे आप कर सकते हो, जल संरक्षण की हमने बात की, बीजों का संरक्षण है, आपका जो वन संरक्षण है, आपका जो हम बात करते हैं कि जैसे जैव विविधता की बात करते हैं।
1: जी जी।
2: क्यों, जैव विविधता भी पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। आप देखोगे कि धीरे धीरे हमारी जैव विविधता ही बहुत कम होती जा रही है, चाहे वो खाने की हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीट हो, ये सब धीरे धीरे धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। और उसका कारण है कि हमारी खेती बाड़ी में हम रासायनिक का उपयोग करते हैं, तो वो उनके अंदर जाता है तो वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाते हैं। हमें अभी वर्तमान में यही सोचने की जरूरत है, देसी खाद हो हमारा, वर्मी कंपोस्ट हो, उकेड़ा हो, या फिर आपका गोबर खाद हो जो हम नॉर्मली तैयार करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो इस तरह से हम उस खाद का उपयोग करें, जो बीज हमारे पास है उसको हम हमेशा सुरक्षित रखें, उसको संरक्षण करके रखें, उसका उपचार करके रखें ताकि अगली बार वो काम आए।
1: बिल्कुल सर।
2: तो इन प्रथाओं को आपको ध्यान में रखें।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमें ये बताया है कि खेती और पर्यावरण का संबंध कैसे है और किस तरीके से खेती के माध्यम से हमारे किसान भाई बहन जो हैं वो पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो बातें सर ढेर सारी हो गई है, अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं सभी श्रोतागणों को ये संदेश देना चाहूंगा कि जो हमारी परंपरागत खेती है उसे हमें पुनः जीवित करना है और उसी के साथ हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और हमारी खेती को भी सुरक्षित रखना है। तो इस दिशा में आप सभी प्रयास करें ताकि जल्द से जल्द है इस तरह का संकट हमारे सामने खड़ा ना हो।
1: बिल्कुल। तो सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
2: जी धन्यवाद।
1: મનીષા બોન જેમકે હવે આપણે વેસ્ટમાં માંગીલાલજી જોડે તકા હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા કાની વાતે બતાડી હી આશા કરું હું કે આ હંગરી વાતે આપણે ભાઈન બોનોને ગમી હોંગા કેમકે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટો પડવાનું તો સૂટા તો પડા પણ સાથે પહેલા હમરી લે કર ગીત ને મોરે પડા સૂટા
0: હવે અંજલી બોન તો ભાઈન બોનો હમલતા રેજો આપણું રેડિયો આપણી વાતે વાગર રેડિયો 90.8 FM માતે

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है परिवार और पृथ्वी की कड़ी है आप और हम। जैसा कि साथियों, जब हम परिवार की बात करते हैं तो हमारे मन में प्रेम, अपनापन, सहयोग और जिम्मेदारी जैसे भाव आते हैं अंजलि। वहीं जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो हमारे सामने प्रकृति, जल, जंगल, जमीन, हवा और जीवन का आधार दिखाई देता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि परिवार और पृथ्वी के बीच क्या संबंध है? सच तो ये अंजलि कि जिस प्रकार परिवार हमारे जीवन का आधार है, उसी प्रकार पृथ्वी समस्त जीवन का आधार है।
0: बिल्कुल।
1: और इन दोनों को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आप और हम।
0: जी हाँ, तो जागृति जी, इस विषय पर श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों न कार्यक्रम की शुरुआत के पहले गीत के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत कर रहे हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। हमारी बातें चल रही थी और हमने आपको विषय बताया था गीत से पहले कि आज हमारी बातचीत का विषय है परिवार और पृथ्वी की कड़ी है हम और आप। जैसा कि श्रोता साथियों, परिवार केवल चार दीवारों के भीतर रहने वाले लोगों का समूह नहीं है, ये संस्कारों, मूल्यों और जिम्मेदारियों का विद्यालय अंजलि। यहीं से हम सीखते हैं कि दूसरों की चिंता कैसे की जाए, संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाए और मिलजुल कर कैसे रहा जाए। यदि परिवार में बच्चों को प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी सिखाई जाए तो वे बड़े होकर पृथ्वी के सच्चे रक्षक बन सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि परिवार से ही शुरू होता है पृथ्वी की रक्षा का सफर।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, हम अक्सर सोचते हैं कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों, संस्थानों और बड़े अभियानों का काम है, लेकिन सच यह है कि पृथ्वी की रक्षा की शुरुआत हमारे घर के दरवाजे से होती है। हम अपने परिवार में जो आदतें अपनाते हैं जागृति जी, वही धीरे धीरे समाज की आदतें बनती जाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: यदि घर में पानी बचाने की आदत है तो बच्चे भी पानी बचाने का महत्व समझेंगे। यदि घर में भोजन की बर्बादी नहीं होती है तो अगली पीढ़ी भी संसाधनों का सम्मान करना सीखेगी।
0: जी हाँ।
1: यदि घर में पौधे लगाए जाते हैं तो बच्चों के मन में भी प्रकृति के प्रति प्रेम पैदा होगा। इसी प्रकार परिवार केवल लोगों का समूह नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी पाठशाला है जहां पृथ्वी के प्रति जिम्मेदारी का पहला पाठ पढ़ाया जाता है।
0: बिल्कुल अंजलि, आज दुनिया अनेक पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन हो गया, बढ़ता प्रदूषण हो गया, जल संकट हो गया, जंगलों की कटाई हो गई, जैव विविधता के नुकसान हमारी पृथ्वी को कमजोर बना रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: इन समस्याओं का समाधान केवल सरकारों या बड़े संगठनों के पास नहीं है, इसका समाधान हमारे घर और परिवार से शुरू होता है। हम देखते हैं कि जब परिवार में बिजली की बचत की जाती है, पानी को व्यर्थ नहीं बहाया जाता, प्लास्टिक का कम उपयोग होता है और पेड़ लगाने की आदत विकसित होती है, तब एक छोटा सा परिवार भी पृथ्वी की सुरक्षा में बड़ा योगदान देता है।
1: बिल्कुल।
0: कई बार हम देखते हैं अंजलि कि लोग सोचते हैं कि उनके अकेले के प्रयास से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन याद रखिए श्रोता साथियों, बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। यदि हर परिवार एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो लाखों पेड़ तैयार हो सकते हैं। यदि हर घर पानी बचाए तो करोड़ों लीटर पानी सुरक्षित किया जा सकता है। यदि हर व्यक्ति अपने आसपास स्वच्छता रखे तो पूरा समाज स्वच्छ बन सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, महात्मा गांधी का स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था। उनका स्वराज आत्मनियंत्रण, जिम्मेदारी और प्रकृति के साथ संतुलन का संदेश देता है।
0: बिल्कुल।
1: सच्चा स्वराज श्रोता साथियों, हमें सिखाता है कि हम केवल अपने हित के बारे में न सोचें, बल्कि उन लोगों और जीवों के बारे में भी सोचें जो हमारे बाद इस धरती पर रहेंगे। जब हम अपने परिवार के भविष्य की चिंता करते हैं, तब हमें पृथ्वी के भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि यदि पृथ्वी स्वस्थ नहीं होगी तो कोई भी परिवार सुरक्षित नहीं रह सकेगा। जागृति जी, आज दुनिया कई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, जल स्रोत सूख रहे हैं, प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ रहा है, पेड़ कट रहे हैं, गर्मी हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है।
0: बिल्कुल।
1: इन समस्याओं का प्रभाव सबसे पहले हमारे परिवारों पर ही पड़ता है। जब पानी की कमी होती है तो घर प्रभावित होता है, जब फसल खराब होती है तो परिवार प्रभावित होता है।
0: जी हाँ।
1: जब बीमारियां बढ़ती हैं तो परिवार प्रभावित होता है। इसलिए पर्यावरण की समस्या कोई दूर की समस्या नहीं, यह हमारे घर की समस्या है।
0: बिल्कुल अंजलि, हम कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कि परिवार हमें केवल जीना नहीं सिखाता, बल्कि जिम्मेदारियां निभाना भी सिखाता है।
1: बिल्कुल।
0: जिस प्रकार हम अपने माता पिता, बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमें पृथ्वी का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि पृथ्वी भी हमारी एक बड़ी माँ है जो बिना किसी भेदभाव के सबको जीवन देती है। हम भोजन करते हैं, अन्न पृथ्वी से आता है, हम पानी पीते हैं तो प्रकृति की देन है, हम सांस लेते हैं तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। इस तरह श्रोता साथियों, हमारा हर पल पृथ्वी से जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: यदि हम पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वास्तव में हम अपने ही भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यहीं बात करते हैं जागृति जी। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि एक व्यक्ति क्या ही बदल सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू हुए हैं।
1: बिल्कुल।
0: यदि एक परिवार एक पेड़ लगाए तो ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन यदि एक गांव के 100 परिवार ऐसा करें तो 100 पेड़ लगेंगे। यदि हर घर प्लास्टिक का उपयोग थोड़ा कम कर दे तो हजारों किलो कचरा कम हो सकता है। यदि हर व्यक्ति बिजली बचाए तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा बच सकती है। यही कारण है कि परिवार और पृथ्वी के बीच सबसे मजबूत कड़ी हम हैं। हमारे निर्णय ही पृथ्वी का भविष्य तय कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, जरा सोचिए कि हम अपने बच्चों के लिए धन, घर और जमीन छोड़ने की योजना बनाते हैं, लेकिन क्या जागृति जी, हम उनके लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और हरियाली भी छोड़ रहे हैं? भविष्य की पीढ़ियां हमसे यह नहीं पूछेगी कि हमने कितनी संपत्ति बनाई है।
1: बिल्कुल।
0: हमसे यह पूछेगी कि हमने उनके लिए कैसे धरती छोड़ी है। इसलिए बच्चों को केवल शिक्षा देना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें प्रकृति से जुड़ना भी सिखाना होगा, उन्हें पेड़ लगाना सिखाना होगा, उन्हें जल संरक्षण सिखाना होगा, उन्हें यह समझाना होगा कि प्रकृति कोई वस्तु नहीं बल्कि जीवन का आधार है।
1: बिल्कुल अंजलि, हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा प्रकृति और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना सिखाया है। वे जल स्रोतों की रक्षा करते थे, पेड़ों को पूजते थे, प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करते थे। आज आधुनिकता के दौर में हमें उनकी इन सीखों को फिर से अपनाने की जरूरत है। विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास नहीं जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य ही छीन ले।
0: बिल्कुल।
1: हमें ऐसा विकास चाहिए जो पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखे, और इस संतुलन की शुरुआत परिवार से होती है। श्रोता साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि सच्चा स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का नाम नहीं है। सच्चा स्वराज तब होता है जब हर नागरिक अपने कर्तव्य को समझे और समाज तथा प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए।
0: बिल्कुल।
1: जब हम अपने परिवार को संस्कारवान बनाते हैं और पृथ्वी की रक्षा करते हैं अंजलि, तब हम सच्चे अर्थों में स्वराज की भावना को मजबूत करते हैं। श्रोता साथियों, आप और हम इस बदलाव की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि हम बदलेंगे तो परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, और देश बदलेगा तो पूरी पृथ्वी ही सुरक्षित हो जाएगी।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, क्योंकि स्वराज अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियों की भी बात करता है। हमें अच्छा वातावरण चाहिए, लेकिन क्या हम स्वयं उसे स्वच्छ बनाने के लिए योगदान दे रहे हैं? ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। हमें हरियाली चाहिए, लेकिन श्रोता साथियों, क्या हम पेड़ लगाने का प्रयास कर रहे हैं? हमें जल चाहिए, लेकिन क्या हम जल बचा रहे हैं? श्रोता साथियों, स्वराज का अर्थ केवल अपेक्षा करना नहीं बल्कि स्वयं आगे बढ़कर योगदान देना भी है।
1: बिल्कुल।
0: चाहे गांव हो या शहर, दोनों पृथ्वी के भविष्य से जुड़े हुए हैं। गांव प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, तो शहर जिम्मेदार उपभोग और कचरा प्रबंधन के माध्यम से योगदान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: हर स्थान पर परिवार ही परिवर्तन की पहली इकाई है। जब परिवार जागरूक होगा तब समाज जागरूक होगा, और जब समाज जागरूक होगा तब पृथ्वी सुरक्षित होगी।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि जब भी हम अपने परिवार के साथ बैठे, एक पल के लिए जरूर सोचिए श्रोता साथियों, कि जिस धरती पर हम खड़े हैं वही हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी घर है। यदि आज हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो कल हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी स्वच्छ हवा में सांस ले सकेंगे।
0: बिल्कुल।
1: निर्मल जल पी सकेंगे और हरियाली से भरी दुनिया का आनंद ले पाएंगे। याद रखिए श्रोता साथियों, परिवर्तन किसी बड़े मंच से नहीं आता बल्कि अपने घर के आंगन से शुरू होता है।
0: जी जी।
1: एक पौधा लगाना, पानी बचाना, स्वच्छता बनाए रखना और प्रकृति के प्रति सम्मान रखना, ये छोटे छोटे कदम ही भविष्य की बड़ी उम्मीद बनते हैं। जब परिवार जागरूक बनता है तब समाज बदलता है, जब समाज बदलता है तब राष्ट्र आगे आता है, और जब राष्ट्र आगे बढ़ता है तब पूरी पृथ्वी मुस्कुराती है, जैसा कि हमने पहले बताया था।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोता साथियों, आज केवल सोचने का नहीं बल्कि कुछ करने का है। हम ये प्रण ले कि अपने परिवार को अच्छे संस्कार देंगे और अपनी धरती को बेहतर भविष्य देंगे, क्योंकि हम केवल इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग नहीं है बल्कि इसके संरक्षक भी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम अक्सर सोचते हैं कि पृथ्वी को बचाने का काम बहुत बड़ा है, ये बड़े बड़े लोग ही कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है श्रोता साथियों कि पृथ्वी का भविष्य करोड़ों छोटे छोटे निर्णयों से बनता है जो हर दिन हमारे घरों में ही मिल जाते हैं। जब एक माँ भोजन की बर्बादी रोकती है तब वह पृथ्वी की रक्षा कर रही होती है।
1: बिल्कुल।
0: जब एक पिता बच्चों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रहा होता है तब वह पृथ्वी की रक्षा कर रहा होता है। जब बच्चे पानी बचाना सीखते हैं तब वे पृथ्वी की रक्षा कर रहे होते हैं।
1: जी हाँ।
0: यानी कि पृथ्वी की सुरक्षा का सबसे मजबूत अभियान किसी बड़े मंच से नहीं बल्कि परिवार से शुरू होता है। हम यह संकल्प लें कि हम केवल अपने परिवार की खुशहाली तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उस धरती की भी चिंता करेंगे जो हम सभी का सबसे बड़ा परिवार है। याद रखिए श्रोता साथियों कि हम पृथ्वी से अलग नहीं, हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, हमारी खुशियाँ, हमारा भविष्य इसी धरती से जुड़ा हुआ है जागृति जी। इसलिए यदि परिवार को सुरक्षित रखना है तो पृथ्वी को सुरक्षित रखना होगा
1: जी हाँ।
0: और यदि पृथ्वी को सुरक्षित रखना है तो हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होगी
1: जी हाँ अंजलि। तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे श्रोताओं, पृथ्वी की रक्षा का काम किसी एक दिन का अभियान नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। जिस प्रकार हम अपने परिवार को प्रेम, सुरक्षा और सम्मान देते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी धरती को भी संरक्षण, संवेदनशीलता और समर्पण देना होगा।
0: बिल्कुल,
1: हम अपने घर से पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत करेंगे, संसाधनों का सम्मान करेंगे, पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ेंगे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि कहा गया है कि परिवार को जागरूक बनाकर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम बदलेंगे तो युग बदलेगा और हम संभलेंगे तो कल संभल जाएगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो बातें

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान।

0: हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथ ही आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
0: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपनी साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ। मनीषा और कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है वागड़ का औषधीय और सांस्कृतिक धरोहर वृक्ष जामुन को लेकर। जानेंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से कि जामुन किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और औषधीय गुणों से भरपूर जामुन जो है वो हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी हम आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से करने वाले हैं, लेकिन जैसा कि हमारे श्रोता साथी जानते हैं कि शुरुआत में हम उन्हें पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं।
2: बिल्कुल,
1: तो क्या ना आज भी शुरुआत पहले गीत के साथ की जाए।
2: जी हाँ
0: जी बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं जामुन से स्वास्थ्य लाभों को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी और कशिश, हम देखते हैं कि जामुन में अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा श्रोता साथियों, जामुन में पानी की मात्रा अधिक होती है,
2: बिल्कुल,
0: जिससे शरीर में नमी बनी रहती है और कम कैलोरी वाला होने के कारण ये फल वजन नियंत्रित करने में भी सहायक होता है।
1: जी हाँ।
0: जामुन में मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि हमारे देश भारत में जामुन का विशेष महत्व है।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि अंजलि जी, गांव में लोग वर्षों से जामुन का सेवन करते आ रहे हैं। दोस्तों, इस फल के बीज, पत्तियां और छाल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। हम देखते हैं कि ये जो फल है वो स्वाद में हल्का खट्टा और मीठा होता है।
2: बिल्कुल,
1: जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को भी पसंद आता है।
2: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। प्रकृति ने हमें अनेक ऐसे फल दिए हैं जो स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य का खजाना भी है। आज हम जैसा कि बात कर रहे हैं ऐसे फल की जिसका नाम सुनते ही जीभ पर हल्की सी मिठास और कसेलापन हमें महसूस होने लगता है।
1: जी हाँ।
2: श्रोता साथियों, जैसा कि हम जामुन को लेकर बात कर रहे हैं, तो बरसात के मौसम में मिलने वाला जामुन सिर्फ एक फल नहीं है बल्कि ये सेहत का खजाना है। गाँव में अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि अगर मौसम में जामुन का सेवन किया जाए तो शरीर को कई तरह के लाभ मिलते हैं।
1: जी हाँ।
2: हम देखते हैं कि जामुन भारत में पाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मौसमी फल है। इसका रंग जो है वो गहरा बैंगनी और काला होता है, जैसा कि सभी श्रोता साथी जानते हैं। जामुन का सबसे चर्चित लाभ यह है कि यह रक्त शर्करा को नियंत्रित रखने में मदद करता है। जामुन के बीज का चूर्ण भी कई लोग उपयोग करते हैं। आयुर्वेद में इसका विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि मधुमेह के मरीजों को किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले चिकित्सक की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। जामुन में ऐसे तत्व पाए जाते हैं श्रोता साथियों जो शरीर में ग्लूकोज के उपयोग को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर हम बात करें कि यह पाचन तंत्र को कैसे मजबूत बनाता है, तो साथियों हम देखते हैं कि आज के अनियमित जीवन शैली और गलत खान पान के कारण पाचन संबंधी समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं।
2: बिल्कुल,
0: जामुन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें मौजूद श्रोता साथियों फाइबर भोजन को पचाने में सहायता करता है। साथ ही हम देखते हैं कि यह कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है। जामुन पेट की गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक होता है। इसके सेवन से श्रोता साथियों आंतों की कार्य क्षमता बेहतर होती है और भोजन का पाचन भी सुचारू रूप से होता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की, तो दोस्तों हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जितनी मजबूत होगी हम उतने ही कम बीमार पड़ेंगे।
2: बिल्कुल
1: अंजलि जी और मनीषा, जामुन में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि ये शरीर को संक्रमणों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं।
2: बिल्कुल,
1: और मौसम बदलने पर होने वाले जो सामान्य बीमारियां हैं उनसे भी हमारे बचाव करने में सहायक होते हैं जामुन।
2: बिल्कुल हाँ। कशिश आपने सही कहा। हम देखते हैं कि ये हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। जामुन में पाए जाने वाला पोटेशियम रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद कर सकता है।
1: जी जी।
2: साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में हानिकारक तत्वों के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि यदि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली के साथ जामुन का सेवन किया जाए तो ये हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से बातें चल ही रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि बहुत अच्छी बातें चल रही है जामुन से स्वास्थ्य पर होने वाले फायदों को लेकर, और गीत से पहले हम कुछ फायदे जान ही रहे थे अंजलि जी।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हमने जाना था कि ये मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक होता है, ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में सहायक होता है।
1: बिल्कुल।
0: अब यही अगर बात करें खून की कमी की, तो जामुन में आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है।
2: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि आयरन जो है वो शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जरूरी होता है साथियों।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में जिन लोगों में खून की कमी या फिर कमजोरी की समस्या देखी जाती है, उनके लिए जामुन का सेवन बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है।
2: जी हाँ
0: दोस्तों, आयरन शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन पहुँचाने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति अधिक ऊर्जावान महसूस करता है।
2: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि जामुन में मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा की सेहत के लिए भी लाभकारी होते हैं। यह त्वचा को प्राकृतिक रूप से चमक प्रदान करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और समय से पहले होने वाली झुर्रियों को भी कम करने में मदद करते हैं।
0: जी जी।
2: हम देखते हैं कि जामुन शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है, जिससे त्वचा साफ और सुंदर दिखाई देती है। श्रोता साथियों, नियमित सेवन से मुहासों और त्वचा संबंधित जो समस्याएं होती है उनमें भी हमें लाभ मिलता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करें हड्डियों की मजबूती की, तो श्रोता साथियों, जामुन में कैल्शियम और अन्य खनिज तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए मजबूत हड्डियां बहुत आवश्यक है। संतुलित भोजन के साथ जामुन का सेवन हड्डियों के लिए लाभकारी माना जाता है।
2: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से मनीषा और कशिश कि जामुन में मौजूद पोषक तत्व आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी योगदान दे सकते हैं। आजकल मोबाइल और टीवी के बढ़ते उपयोग के कारण आंखों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, ऐसे में पौष्टिक फलों का सेवन आंखों के लिए लाभदायक हो सकता है।
0: बिल्कुल
2: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक अच्छा स्वास्थ्य केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी होना चाहिए। जामुन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमारे शरीर की थकानी उनको भी कम करते हैं। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मानसिक तनाव भी कम होता है। संतुलित आहार में जामुन को शामिल करने से व्यक्ति अधिक ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करता है।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। वहीं अगर लीवर के स्वास्थ्य की हम बात करें तो देखते हैं कि लीवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो श्रोता साथियों विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। अंजलि जी, जामुन में मौजूद पोषक तत्व लीवर के सामान्य कार्यों को समर्थन करते हैं।
1: जी जी।
0: जिससे हम देखते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार के साथ जामुन का सेवन लीवर के लिए भी जरूरी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: यहीं अगर बात की जाए मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभावों की, तो जैसा कि हम सभी ने सुनाई है और हम सभी जानते भी हैं, स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन भी जरूरी है। जामुन में पाए जाने वाले अलग अलग पोषक तत्व साथियों शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कहा जाता है कि जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मानसिक कार्य क्षमता और उत्साह भी हमारा बेहतर बना रहता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम ढेर सारे स्वास्थ्य लाभ को जान पाए। अब यही बात आती है कि जामुन का सेवन कैसे करें।
0: जी,
1: तो श्रोता साथियों, ताजे जामुन सीधे खाए जा सकते हैं, जामुन का रस बनाया कर खाया जा सकता है, जामुन का सिरका भी उपयोग में लिया जा सकता है। इसी के साथ जामुन के बीजों का चूर्ण आयुर्वेदिक उपयोग में लिया जाता है। जामुन से शरबत और अन्य पेय पदार्थ भी तैयार किए जाते हैं, लेकिन किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन उचित नहीं होता। संतुलित मात्रा में सेवन करना ही सबसे अच्छा तरीका है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जामुन केवल एक मौसमी फल नहीं है बल्कि प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। यह हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य की राह अक्सर हमारे खेतों, बागों और स्थानीय खाद्य पदार्थों से होकर गुजरती है। आज जब बाजार में रंग बिरंगे पैकेट और कृत्रिम पेय पदार्थ की भरमार है, तब जामुन जैसे प्राकृतिक फल हमें सादगी, पोषण और संतुलन का संदेश देते हैं।
2: जी हाँ।
1: हमारी पुरानी पीढ़ियां मौसमी फलों के महत्व को महत्व देती है, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रकृति हर मौसम में शरीर की जरूरत के अनुसार भोजन उपलब्ध कराती है।
2: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि जामुन प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, जो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के लिए अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। साथियों, इसमें मौजूद विटामिन, खनिज, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट शरीर को अनेक प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: मधुमेह नियंत्रण, पाचन सुधार, रक्त वृद्धि, हृदय सुरक्षा, त्वचा की देखभाल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने जैसे अनेक गुण इसे विशेष बनाते हैं। आज श्रोता साथियों, आवश्यकता है कि कृत्रिम खाद्य पदार्थों के स्थान पर प्राकृतिक और पौष्टिक फलों को अपने जीवन में हिस्सा बनाएं। जामुन का नियमित और संतुलित सेवन स्वस्थ जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
1: बिल्कुल,
2: इसीलिए अंजलि जी और कशिश, जामुन को केवल एक मौसमी फल न समझकर स्वास्थ्य का प्राकृतिक रक्षक मानना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: यह स्वस्थ, सशक्त और जागरूक समाज की पहचान है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम जान पाए वागड़ का औषधीय और सांस्कृतिक धरोहर वृक्ष जामुन के फायदों को लेकर। आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ दिलीप जी,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम और हमारी स्वास्थ्यप्रद बातें अभी ही समाप्त होती है। अंत में आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे साथियों कि जामुन सिर्फ एक फल नहीं है बल्कि हमारी सेहत का प्राकृतिक खजाना है। इसका हर दाना स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी उपहार है श्रोता साथियों।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में हम सभी मिलकर इस मौसम में हमारी थाली में जामुन को जगह दें और प्रकृति के इस अनमोल वरदान का लाभ उठाएं। याद रखिए दोस्तों, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़ी सेहत बनाती है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में आप जामुन खाइए, स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाइए।
1: जी हाँ कशिश, इन्हीं स्वास्थ्यप्रद बातों के साथ में हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी जो भी बातें रहीं, गीत संगीत रहें, वो श्रोता साथियों को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
1: बिल्कुल,
2: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर
2: और आपके अपने साथी अंजलि पारशर को।
3: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखा है, तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: भाई नुबुनु, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
2: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
0: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
2: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें। महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।